0: इट्स कमर्शियल टाइम।
1: इंग्लैंड में हम पानी का इस्तेमाल उतनी तेजी से कर रहे हैं जितनी तेजी से प्रकृति इसे दोबारा भर नहीं सकती। अगर कुछ नहीं बदला तो 2055 तक हमें हर दिन 5 बिलियन लीटर से भी अधिक पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है और वेल्स में अधिक गीली सर्दियां और अधिक सूखी गर्मियां पानी की सप्लाई पर दबाव डाल रही हैं। हम में से अधिकतर लोग सोचते हैं कि हम दिन में 30 लीटर पानी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हकीकत में ये 140 लीटर के करीब है। हम सब कुछ साधारण बदलाव करके पानी बचाने में मदद कर सकते हैं। शावर लेने में कम समय लगाएं, लीक करते नलों या टॉयलेट को ठीक करें, चलते हुए नल की बजाय बर्तन धोने के लिए वॉशिंग अप बाउल का इस्तेमाल करें और अपने डिशवॉशर या वॉशिंग मशीन पर एको मोड चुनिए। पानी अनमोल है, इसकी इज्जत के लिए हम सबको कम पानी का इस्तेमाल करना होगा। हर दिन पानी बचाने के आसान तरीकों के लिए लेट्स सेव वाटर सर्च करें या letssavewater.com पर जाएं।
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्क टॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
5: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
6: Get ready to move.
7: It's all about the beat.
8: Wow, FM.
9: Only Tune Super Hit Channel.
10: Fizz on 97.1 FM.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Huzzah 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन।
6: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
7: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्डन किंग रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315069। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
8: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
9: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
8: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
9: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
8: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
9: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
8: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
10: From 12:30 PM to 11 PM every Wednesday to Monday.
7: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
11: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
12: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.

सितम खुद देखे है खफा कोई, वफा भी करके है बुरा कोई, ऐसा भी करता है भला कोई। छोड़ो ना करता मैं ख्याली बातें, लाता ना रिश्तों में पुरानी बातें, बना इश्क की मिसाल कोई और बना इश्क पे सा...

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station
2: that plays
3: foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन. सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां. तो जुड़े रहिए, सुनिए.
6: इट्स कमर्शियल टाइम.
7: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services, looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham. Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
8: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
9: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ.
8: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
9: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले.
8: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं. और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं.
9: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
8: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ. ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं. चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा.
7: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे.
8: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है. होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793.
10: Ariana Supermarket, 126132 Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
11: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
12: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
11: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास.
12: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप.
11: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है. और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना.
12: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं.
13: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
11: Park Foods, जो नाम है मायार का.
14: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
15: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
14: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
15: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
14: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
16: You are listening 97.1 FM.

0: देखिए नई ड्रामा सीरियल खुश नसीबी 24 मार्च से रोजाना रात 7 बजे सिर्फ जियो पर।
1: Get ready to move.
2: It's all about the beats.
3: Wow,
4: Only Tune Super Hit Channel.
5: Fizz on 97.1 FM.

0: breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
1: ओए खुशियां मनाओ भंगड़े पाओ
2: भंगड़े पाओ
1: भंगड़े पाओ
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं। खैर तो है,
1: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
1: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
1: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी कम कर देना। सोने ते स्वागा ये कि हर तरह दा वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
1: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
1: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: जबरदस्त हिट्स
1: म्यूजिक
2: इट्स कमर्शियल टाइम।
3: इंग्लैंड में हम पानी का इस्तेमाल उतनी तेजी से कर रहे हैं जितनी तेजी से प्रकृति इसे दोबारा भर नहीं सकती। अगर कुछ नहीं बदला तो 2055 तक हमें हर दिन 5 बिलियन लीटर से भी अधिक पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है और वेल्स में अधिक गीली सर्दियां और अधिक सूखी गर्मियां पानी की सप्लाई पर दबाव डाल रही हैं। हम में से अधिकतर लोग सोचते हैं कि हम दिन में 30 लीटर पानी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हकीकत में ये 140 लीटर के करीब है। हम सब कुछ साधारण बदलाव करके पानी बचाने में मदद कर सकते हैं। शावर लेने में कम समय लगाएं, लीक करते नलों या टॉयलेट को ठीक करें, चलते हुए नल की बजाय बर्तन धोने के लिए वॉशिंग अप बाउल का इस्तेमाल करें और अपने डिशवॉशर या वॉशिंग मशीन पर एको मोड चुनिए। पानी अनमोल है, इसकी इज्जत के लिए हम सबको कम पानी का इस्तेमाल करना होगा। हर दिन पानी बचाने के आसान तरीकों के लिए लेट्स सेव वाटर सर्च करें या letssavewater.com पर जाएं।
4: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
5: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
6: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
5: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
6: मुगल बिल्डर्स?
5: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
7: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
5: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
7: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
5: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays.
3: Foot tapping music.
4: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
5: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए। गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकया ही याद

0: बन जाता है एक यादगार लम्हा।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार, सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770-210-7932।
4: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
6: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: Lassa, Students Learning and Skills Academy.
1: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
2: जी, मैं कहाँ हो सकता हूँ? या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
1: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
2: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
1: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
2: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
3: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
1: Park Foods, जो नाम है मायार का।
4: This is a public service announcement.
5: The station
6: that plays
7: foot tapping music.
8: Hazar 97.1

0: जी में है।
1: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
0: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
1: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
2: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
3: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
4: This is a public service announcement.
5: Everybody. The station. That plays
6: foot tapping music.
7: You are listening 97.1 FM.

Turn It Up, Radio Faza 97.1 FM.

0: सबसे अलग
1: इट्स कमर्शियल टाइम।
2: Rosehead Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosehead Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosehead Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosehead-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosehead Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
3: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
4: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
3: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
4: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
3: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
4: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
3: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
2: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
3: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
7: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
7: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
7: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
8: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
6: Park Foods, जो नाम है मायार का।
9: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
10: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow cooked, aromatic and rich with traditional spices.
9: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
10: Visit us at 136 138 Alfreton Road, Nottingham.
9: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
11: You are listening 97.1 FM.

And here we go, let's discuss today's weather report. जनाब आज आपको बताते चलें कि Nottinghamshire का टेम्परेचर मैक्सिमम 18 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. धूप भी है और छांव भी है. कहीं कहीं कहते हैं दिल का मौसम अच्छे हो तो सारे ही मौसम अच्छे लगते हैं. धूप को भी इंजॉय कर रहे हैं आज आप लोग. सामी ह्यूमिडिटी का लेवल 0% बिल्कुल. और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि शाम 8 से 9 बजे तक यानी इन द इवनिंग कहीं हल्के से पैचेज आएंगे गहरे बादलों के, लेकिन नॉटिंघमशायर में किसी जगह पे कहीं थोड़ी बहुत बूंदाबांदी होगी. जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ कि आपने इसमें से ये डिसाइड करना है कि बूंदा कौन सी है और बांदी कौन सी है. और आज रात के हवाले से मैं आपको बताते चलूंगा ना, नाइट विल बिगिन मोस्टली क्लाउडली विद अ फ्यू क्लियर स्पेल्स थ्रू द नाइट. इट विल टर्न ग्रेजुअली क्लियर एज द क्लाउड ब्रेक्स अप टिल डॉन. और इवनिंग की क्या सिचुएशन रहेगी यानी आपसे लेके शाम तक वो भी बताते चलूंगा. टुडे विल बिगिन सनी एंड ड्राई. Areas of cloud will develop in the afternoon, bringing a slightly chance of a shower breezy.

आज का जी टॉपिक है, टॉपिक बड़ा जबरदस्त है जो आज को हम डिस्कस करेंगे। अगर आपके भी इस हवाले से कोई विचार है, कोई विशेष कोई टिप्पणी है अगर आपकी, आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो अपने विचारों को मेरे विचारों के साथ मिलाने के लिए, और इसके अलावा आपको ये बताता चलूं कि मेरे अल्फाज के साथ अपने विचार को यानी अपनी स्वाज को अपने जहन को दौड़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ट्यून करके रखना पड़ेगा 97.1 FM डैप पे। आप हमें फजा के नाम से सर्च करेंगे और उसके बाद आप सुन भी सकते हैं। इसके अलावा आपको ये बताते चले कि ऐप भी है हमारी जहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग आप नहीं सुनना चाहते या सुन नहीं पा रहे या अपने जो हमारी नॉटिंगहमशायर की हदूद है इससे बाहर चले जाते हैं, तो फिर ऐप को डाउनलोड करके आप कंटिन्यू कर सकते हैं जबरदस्त प्रोग्राम को या बाकी भी जितने भी ट्रांसमिशन हैं उनको।

क्योंकि हम चाहते हैं कि आप लोग हमारे साथ रहें, हम आपके साथ रहें, और आपको ये भी बताते चलें कि जनाब हमारी रेडियो फजा की जितनी भी बाकी टीम है जो काम कर रही है, फजा 97.1 एफएम इज मीडिया बेसिकली एलोकेटेड एट चैपल हाउस। यहाँ पे हमारे पास जितनी भी ट्रांसमिशंस हैं या बाकी जितने भी हमारे प्रोग्राम्स हैं या पॉडकास्ट हैं या उसके अलावा जितनी भी हमारी फैसिलिटीज़ हैं जिनको आप इंजॉय कर सकते हैं या जिनको आप समझना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी को निभाने के लिए और पिन्हा खानों को फिल करने के लिए बड़ी ज़रूरी है, तो जनाब आपको जाना पड़ेगा हमारी वेबसाइट विच इज़ रेडियो फजा .co.uk। लाइव ट्रांसमिशन आप कैसे सुन सकते हैं, नब एड्रेस बार में जाएंगे, वहां जाके आप लिखेंगे live.radiofaza.co.uk और आपको यही आवाज़ कहते हुए मिलेगी, गुड मॉर्निंग नॉटिंघम।

अलावा जी हमारी जितनी भी ट्रांसमिशन है उनके बारे में तो आप जान ही चुके हैं, लेकिन इसके अलावा जितने भी हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, यूट्यूब @etcetera x, आप इन पे जाकर रेडियो फजा 97.1 FM ऑफिशियल सर्च करेंगे और उसके बाद आप सब्सक्राइब करेंगे, फॉलो करेंगे, मैसेजेस करेंगे और एहसास दिलाएंगे हमें अपने होने का। ऐप को डाउनलोड करने का तरीकाकार मैं आपको बताई देता हूँ जनाब। आप जाएंगे गूगल प्ले पे, प्ले स्टोर पे, वहां जाके लिखेंगे फजा रेडियो या रेडियो फजा 97.1 FM ऑफिशियल, फिर एक पर्पल कलर के बैकग्राउंड के साथ गोल्डन या येलो या पीच कलर में लिखा हुआ फजा आपके सामने आएगा। आप उसको डाउनलोड करेंगे, गेट करेंगे और जब आप उसको प्ले करेंगे तो यही आवाज रहेगी आपकी स्मार्टों की नजर। गुड मॉर्निंग नॉटिंघम।

0: 50669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
1: आप कैसा म्यूजिक सुनना चाहते हैं?
2: साली तू मानी नहीं, कभी तो मानेगी।
1: पॉप फिल्मी गाने,

जी तो लिसनर्स वेलकम बैक, रेडियो फजा 97.1 एफएम लाइव स्टूडियो से आपका मेजबान आसिफ खान एक बार फिर आपके साथ। गुड मॉर्निंग नॉटिंघम जी, गुड वाली मॉर्निंग नॉटिंघम में आपको दिल किया था गहराइयों से खुश आमदेद कहते हुए।

वेलकम है जी, स्वागत है उन समातों के लिए जिन्होंने इस वक्त मुझे ट्यून किया 97.1 FM पे या फिर डैप पे या फिर हमारी ऐप पे। डैप पे जनाब आप हमें फजा के नाम से सर्च करेंगे, FM पे डेफिनेट 97.1 FM आप ड्राइव करते हुए मुझे सुन रहे हैं अगर, तो आपसे गुजारिश है कि ऑलवेज फास्टन योर सीट बेल्ट एंड डू नॉट यूज योर मोबाइल फोन व्हाइल ड्राइविंग।

लेकिन अगर आप रास्ते में सुनते सुनते या रास्ते में किसी जगह पे भी ऐसी जगह पे कहीं पड़ाव करते हैं जहाँ पे अच्छी सी कॉफ़ी मिलती हो, कोस्टा स्टारबक्स या वट एवर जो ब्रांड भी आपको पसंद है, तो उस हवाले से आपको बताता चलूँ कि आप डबल एस्प्रेसो का एक शॉट अगर अपने लिए आप कैपेचिनो या कोई भी कोल्ड कॉफ़ी में स्पेशली लव फ्रैपेचिनो अगर आप ऐसी कोई चीज़ सेलेक्ट करते हैं तो फिर एक मेरे लिए भी कीजिएगा। डेफिनेटली हम इकट्ठे कॉफ़ी भी पियेंगे, लेकिन इमेजिनेशन में बॉक्सर ना एक मियाँ बीवी बड़ा ज़बरदस्त एक लतीफ़ो कहते हैं बेगम आज हम खाना बाहर खाएंगे, तो वाइफ बड़ी रेडी होती है, तैयार हो जाती है, फौरन एक्टिव हो जाती है, जी आज हमने बाहर

जाना है डिनर करने। तो कुछ देर के बाद साहब वापस आते हैं, घर कहते हैं खाना रेडी। उनका आपने कहा था हम बाहर खाना खाएंगे। उन्होंने कहा भाई आप खाना रेडी करें, हमने बाहर लॉन्च में खाना खाना है, आज हम अंदर नहीं खाएंगे। तो जनाब ये बात है कि अभी आपके साथ कॉफ़ी पिए के आपके साथ आपकी गाड़ी में बैठ के, लेकिन अगर आप ऑलरेडी मेरे साथ मौजूद हैं तो फिर एक खूबसूरत सी कप कॉफ़ी का समझ लीजिए कि आपने कह दिया, मैंने पी लिया और गुड मॉर्निंग नॉटिंघम हो गया। लेकिन सामीन आज का जो टॉपिक है ना कीमत का, और कुछ ऐसे मैसेजेस मेरे पास कुछ व्यक्तियों के मुझे रिसीव हुए हैं, और जहाँ पे कुछ मैंने ट्रैक्स आप लोगों को सिलेक्ट किए, हल्का सा आपको बीच में म्यूजिक सुनाई दिया होगा। हमारी जो प्रोडक्शन टीम है वो हर मौसम के हवाले से, या आप ये कह लें कि माइंडसेट के हवाले से ना कुछ ट्रैक्स देती है, वो देखती है कि आज का जो हमारा प्रेजेंटर है, जो आरजी है, जो ब्रॉडकास्टर है, उसका माइंडसेट कैसा है। अगर आज तो वो फ्रेश है, एक्टिव है और बड़ी एनर्जेटिक तरीके से स्टूडियो में आया, तो फिर उसके लिए जो ट्रैक्स निकाले जाते हैं उनके के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है पता चल जाता है कि जैसा अच्छा ब्रॉडकास्टर होगा, अगर एनर्जेटिक होगा तो डेफिनेटली उसके लिसनर्स भी वैसे ही होंगे। तो बेसिकली ये नब्ज का रूह का रिश्ता है, बड़े कमजोर से धागे होते हैं जिनको आप लेमिनेशन करते हैं, जिनको आप उनकी ना कॉइलिंग करते हैं, और कॉइलिंग करने के बाद आपकी इंसुलेशन बड़ी मजबूत होती है आपके रिश्तों से, आपकी बातों से, आपके अमाल से। और जब अमाल, जब आपकी बातें, जब आपकी सोच आपके अमाल के जरिए झलकती है लोगों के सामने, यानी जो कुछ आप कह रहे हैं वो आपके अमाल से नजर आ रहा है, तो फिर यकीन करें कि वहां पे मैं कहता हूं कि इंसान यानी आपकी कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है।

नहीं जी, बड़े प्यारे से व्यक्ति हमारे, बड़े प्यारे से लिसनर हैं, सामीन हैं, मेरे जी वकार भी हैं, जी एहतराम भी हैं, जी शर्फ भी हैं, जी मोहब्बत भी हैं। उन्होंने बड़ी प्यारी से मुझसे बात की, वो कहते हैं कि यार जहनी सुकून की क्या कीमत हो सकती है, यानी जहनी सुकून यानी माइंड, पीस ऑफ माइंड यानी आप परचेज करना चाहते हैं तो लेना। आप ज़बरदस्त सा एक छोटी सी नसर है, लेकिन नज़म भी कह सकते हैं, एक छोटा सा शेर भी, मक्ता भी कह सकते हैं, उसे आपकी खिदमत में गोश गुजार किए देता हूँ जनाब। थैंक यू वेरी मच। ये अखलाक साहब हैं हमारे साथ, नॉटिंघम शायर से ही हैं, और जनाब इनके लिए ये गुजारिश है अखलाक भाई। ये अखलाक साहब मैं आपको ये बता दूँ, कहते हैं कि खसारा है हर वो चीज़, हर वो एहसास और हर वो शख्स जिसकी कीमत आपका जहनी सुकून हो। ले जनाब, तीन चीज़ें आप अपने प्राइस के डेफिसिट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, यानी आपकी खसारे में आएंगी, यानी ये आपके लॉस में जाएंगी। अब जो अकाउंट्स और फाइनेंस से रिलेटेड बंदे हैं वो इस चीज़ को समझेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या होती है, पी एंड एल में बेसिकली क्या होता है, और उसकी क्रेडिबिलिटी कैसे मैनेज करते हैं। तो बेसिकली हर वो चीज़, हर वो एहसास और हर वो शख्स, तीन चीज़ें। एहसास, कोई भी व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में, कोई भी पुरुष, कोई नारी या कोई भी ऐसा शख्स जिसकी वजह से आपका जहनी सुकून तबाह हो रहा हो, वो आपके लिए खसारा है। अच्छा, अब इस चीज़ को हम लेके आते हैं कि थोड़ा सा हम ज़रा देखें अपनी जो अल्लाह ताला की कुदरत है, जो 7 गैलेक्सीज हैं, उसमें इंसान की कदर कीमत क्या है। इंसान की कदर कीमत है जनाब, अक्ल दी है ऊपर वाले ने, अपनी वो सिफ्त दी है जो सिर्फ बाकी किसी मखलूक के पास नहीं, और फिर हमें ठहरा दिया उन सब के दरमियान में अशरफुल मखलूकात। यानी हम जो कुछ करेंगे, जो कुछ बोएंगे, जो कुछ काटेंगे, हर चीज़ की वैल्यू हमें पता है। हमें समझ बूझ का एक ऐसा पैमाना दिया है, हमें एक ऐसा स्केल दिया है, जिस स्केल को हम थोड़ी देर के लिए अगर अपने इवेल्युएशन में लेके जाएं, या किसी ऐसे इंसान को हम कोशिश करें इवेल्युएट करने की, जो बेसिकली एक अच्छा फ्रूटफुल इंसान भी है, जो लोगों को फ़ायदा भी देता है, लेकिन वक्ती तौर पे यानी फॉर द टाइम बीइंग ऑन द स्पॉट वो इतना कारामद नहीं है जितना कारामद लोग उसे समझ रहे हैं, जितना कारामद आप उसे समझते हैं। क्यों? इस पर डिपेंड करते हैं सरकमस्टेंसेस, हालात जो मैच करते हैं। अब ऊपर वाले ने इंसान को अक्ल दी, इंसान की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ा दी इस पूरी कायनात के अंदर, सारी गैलेक्सीज के अंदर, लेकिन उस कीमत, उसकी कीमत क्या चुकानी पड़ी। अब देखें, कोई चीज़ भी आप परचेज करेंगे तो डेफिनेटली उसकी कोई ना कोई प्राइस देंगे। अक्ल की कीमत क्या? अक्ल की कीमत है जी शुक्राना, ऊपर वाले का शुक्र अदा करना, हर बात पे शुक्र अदा करना, और कहना कि ऐ ऊपर वाले, ऐ परवरदिगार, कि मैं तेरा ही बंदा हूँ, तेरा ही दिया हुआ रिस्क खाता हूँ, लेकिन मैं तेरी शुक्रगुजारी, मैं बहुत ना अहल हूँ, मैं कारगर नहीं हूँ, और मुझे हमेशा ये प्रॉब्लम रहती है कि मैं तेरा ना शुक्रा रहता हूँ, या मुझे शुक्र करने का टाइम नहीं मिलता। अगर हम ऊपर वाले के हुजूर जब खड़े होते हैं या क्याम करते हैं, जब क्याम पजीर होते हैं, और उसके बाद जब ऊपर वाले को हम ये कह लें कि बलाजवाज एक ऐसी जगह पे देख रहे हैं कि जब आप नमाज कायम करें या जो भी अपनी रिचुअल्स हैं आपको कंप्लीट करें, तो फिर जिसके लिए वो रिचुअल्स की जा रही हैं, जिसके लिए वो एहतमाम किया जा रहा है, वो आपके मन में बसे, वो आपकी नीयतों में बसे, वो आपके किरदार का एक ना खूबसूरत सा अखलास और पैकर भी बने, जिसके बाद लोग ये देखें कि यार ये वो बंदा है जिसमें खुदा नज़र आता है। अब देखी जाए तो खुदा बेसिकली इंसान की शहरक से भी ज़्यादा करीब है, बख्तर माओ से ज़्यादा प्यार करने वाली हस्ती, सामीन ऐसी हस्ती जिसको ऊपर वाली हस्ती, ऊपर वाली ज़ात बख्तर माओ से ज़्यादा प्यार करती है, उसकी कोई कीमत लगा सकता है? उसकी कोई कीमत नहीं होती। इसलिए लिहाजा हजरत इंसान की कभी भी कोई कीमत ना लगाएं। अगर वो आपके पास रेफरेंस से आया, अगर वो आपके पास मेरिट की बेस पे आया, तो फिर आप इवेलुएट करें। आप अगर उसकी कीमत लगाना चाहते हैं तो बेसिकली उसके जो आप कह लें जो सर्विसेज हैं, जो वो काम करेगा, जो वो नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट करेगा, या वो कुछ भी अपना जो एक्सपीरियंस है वो लोगों को सिखाएगा, उसके बाद आपके कंपनी को या आपके ऑर्गेनाइजेशन को एक अच्छी, एक स्ट्रॉन्ग बेस दे देता है, तो बेसिकली उसने अपनी कीमत अदा कर दी है। तो समीन यही वो चीज़ें हैं जिन चीज़ों को लेकर हम साथ चलते हैं। लेकिन कभी आपने ये देखा है

Wow. While there is life, there is hope. Now, thank you very much. जो लोग इस वक्त हमें मैसेजेस कर रहे हैं और मैसेजेस करके हमें ये भी बता रहे हैं कि जनाब आप लोग हमारे साथ मौजूद हैं. एक बार फिर से मैं नंबर दोहराए देता हूं, अपने स्टूडियो का नंबर है 01157100971. जो हमारे लोकल लिसनर जनाब नॉटिंघम शहर से हमें सुन रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि अपना पोस्टल कोड लाजमी साथ बताया करें और अगर हो सके तो नाम भी बता दीजिए करें ताकि मैं अनाउंस कर सकूं अपने बाकी लिसनर्स को कि कौन कहां से किस तरह किस लिए और क्यों हमें सुन रहा है. और जो लोग हमारे नॉटिंघम शहर से बाहर हैं और जो कुछ बाहर से यानी दुबई से हमें मोहसिन भाई मोहसिन हमें ज्वाइन कर चुके हैं, थैंक यू वेरी मच. अफजाल हमारे साथ मौजूद हैं, थैंक्स लॉट. अलिशबा हमारे साथ मौजूद हैं. मालिनी जी आज हमारे पास बोल्टन से दोबारा आ चुकी हैं, थैंक यू वेरी मच. ये तीन चार हमारे ऐसे लिसनर्स हैं जो FM की हदूद से बाहर हैं या फिर डैब की हदूद से बाहर हैं, लेकिन आप सब लोग ही कदरे अहमियत और कदरे पेशवा कीमत के मालिक हैं. नहीं, स्टीफन हॉकिंस, बेसिकली स्टीफन ने क्या कहा, इन्होंने कहा है कि जनाब अगर आपके पास जिंदगी में कामयाबी और काम हासिल करने की मोटिवेशन नहीं है ना, तो फिर आप प्राइसलेस लोग हैं. अब ना मोटिवेशन भी आपकी किसी ना किसी कीमत के साथ जुड़ती है. जहां पे भी आपने कोई चीज़ परचेज करनी है, कोई रिस्पेक्ट लेनी है, कोई डेसिग्नेशन लेना है, उसके लिए आपको एक कीमत देनी पड़ती है अपनी सलाहियतों की सूरत में या टेबल के नीचे से अगर आप कुछ देते हैं, व्हाटएवर. हमारी साउथ एशियन कम्युनिटी में चीज़ बड़ी कॉमन है इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन हमारे जो सिविलाइज लोग हैं यहाँ के जितने भी खूबसूरत से नॉटिंघमशायर की पर्सनैलिटीज हैं, they're all very beautiful and they're very special all the time. और इसलिए मैं कहता हूँ कि जनाब हमारे साथ जुड़े रहे, हम आपके साथ जुड़े रहे हैं ताकि आप एंटरटेन भी, इंफॉर्मेशन भी और कम्युनिकेशन भी हमारे साथ रख सकें. ले जी कुछ समय रह चुका है, 5 से 6 मिनट है, इसके बाद कमर्शियल ब्रेक हाइल हो जाएगी, लेकिन कुछ ट्रैक्स हैं मेरे पास जो मैं आपकी स्मार्टों की नजर करना चाहता हूँ. इंजॉय कीजिए खूबसूरत से ट्रैक्स. इन ट्रैक्स के उस पार होगी कमर्शियल ब्रेक और कमर्शियल ब्रेक के उस पार जब मैं वापस आऊंगा तो फिर कीमत को थोड़ा सा डिस्कस करके क्लोज भी करेंगे, आपके कुछ मैसेजेस भी शामिल करेंगे. ब्रेक पे नहीं बल्कि ट्रैक प्ले करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि जनाब हमारे स्टूडियो का लाइव व्हाट्सएप नंबर है 01157100971. इस नंबर पे आप लाइव कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप की फ्री कॉल होती है, चार्जेस नहीं लगते, और उसके अलावा आप मैसेज भी कर सकते हैं अपने नाम और पते के साथ ताकि हम शामिल कर सकें आपको अपने प्रोग्राम विच इज गुड मॉर्निंग जी, गुड वाली मॉर्निंग नॉटिंघम. तो सुनिए जनाब जबरदस्त ट्रैक्स के उस पार.

0: It's commercial time.
1: इंग्लैंड में हम पानी का इस्तेमाल उतनी तेजी से कर रहे हैं जितनी तेजी से प्रकृति इसे दोबारा भर नहीं सकती। अगर कुछ नहीं बदला तो 2055 तक हमें हर दिन 5 बिलियन लीटर से भी अधिक पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है और वेल्स में अधिक गीली सर्दियां और अधिक सूखी गर्मियां पानी की सप्लाई पर दबाव डाल रही हैं। हम इससे अधिकतर लोग सोचते हैं कि हम दिन में 30 लीटर पानी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हकीकत में ये 140 लीटर के करीब है। हम सब कुछ साधारण बदलाव करके पानी बचाने में मदद कर सकते हैं। शावर लेने में कम समय लगाएं, लीक करते नलों या टॉयलेट को ठीक करें, चलते हुए नल की बजाय बर्तन धोने के लिए वॉशिंग अप बाउल का इस्तेमाल करें और अपने डिशवॉशर या वॉशिंग मशीन पर एको मोड चुनिए। पानी अनमोल है, इसकी इज्जत के लिए हम सबको कम पानी का इस्तेमाल करना होगा। हर दिन पानी बचाने के आसान तरीकों के लिए लेट्स सेव वाटर सर्च करें या letssavewater.com पर जाएं।
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
4: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करे।
0: Bigger, bigger and better, better. The radio station for people who love music. 97.1 FM.

See the listeners, welcome back. Jido listeners, welcome back. Samir Zivkar and listeners of Radio Faza 97.1 FM. Here is your host Nazir Khan. जी बिल्कुल जनाब, कमर्शियल ब्रेक से पहले भी कुछ ट्रैक्स थे क्योंकि पूरे प्रोग्राम में बातें ज्यादा हुई, ट्रैक्स कम थे, एंटरटेनमेंट कहीं मिस ना हो जाए यही की सोच के समझ के और आपको समझा के कुछ ही किया जनाब गुड मॉर्निंग नॉटिंगम को दोबारा से शुरू कर सकूं। और गुड वाली मॉर्निंग गुड कैसे होती है जब आप लोगों की समातों की नजर होती है मेरी आवाज और आप ट्यून करते हैं 97.1 FM।

जी तो लिसनर्स सेगमेंट है हमारा इस वक्त ये जो बेसिकली आइडिया का, और इस आइडिया में आज हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली इंसान की जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है, जिसको आप ये समझ लें कि आप बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म पे या क्रिटिक्स पे आप बात कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं या आप किसी को समझा सकते हैं, उसको इम्प्रूव करने के क्या तरीक़ाकार होते हैं। ये भी बड़ी एक इम्पॉर्टेंट जाविया है, बड़ा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है इंसान की ज़िंदगी में किसी की कीमत यानी किसी की प्राइस लगाने के लिए, कि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग या आपकी नॉर्मल थिंकिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपकी जहनी जो कैफियत है वो क्या है, मेंटेलिटी क्या है, ये अक्कासी करती है बेसिकली आपके अल्फाज की अक्कासी करती है, आपके नशोनुमा की अक्कासी करती है बेसिकली आपके डेली अफकार की या डेली जो जैश नसल आपकी है, जो भी आपकी एक्टिविटीज हैं उनको ये मैनेज करती है। तो जनाब ये आइडिया भी आपके साथ रखा जाएगा। बात हम कर रहे थे कीमत की, टॉपिक था आज का कीमत यानी प्राइस। तो सबसे पहले ना हमारी लाइफ में काफ़ी सारी डिस्कशंस हमने की, और ब्रेक से पहले स्टीफन हॉकिंस हमारे साथ मौजूद थे कि एक दुनिया के लिए बिल्कुल फारिग किस्म का बेकदरा सा आदमी, और उस आदमी ने क्या ज़बरदस्त तरीके से अपने आप को मैनेज किया, और किस तरह एक बिल्कुल आप ये कह लें कि अपाहिज आदमी ने, दुनिया जिसको अपाहिज कहती थी, एंड कुड यू बिलीव के टिल 8th स्टैंडर्ड ही कुड नॉट रीड सिंगल वर्ड, यानी उनको पढ़ना भी नहीं आता, और उसके बाद पूरी जो फैमिली थी वो एजुकेशन से बिलोंग करती थी, और उसके बाद खुद सोचें कि एक बीस में पीस ऐसा निकला, एक व्यक्ति ऐसा निकला, एक पुरुष ऐसा निकला है, तो फिर क्या चीज़ बनती है। लोग तू तू मैं थू थू मैं भी करेंगे बल्कि, लेकिन क्रिटिसिज्म ज़्यादा हो जाएगा इंसान का। वैसे भी क्रिटिसिज्म पे आपको पता है इस पर एक स्पेशल टॉपिक रखा जाएगा, क्रिटिसिज्म पे पॉजिटिव नेगेटिव व्हाटएवर, लेकिन जो लोग पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करते हैं किसी की सलाह के लिए, किसी कोशिश के लिए, फलाह बहबूद के लिए, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, बड़ी खूबसूरत चीज़ होती है, और लोग इसको ज़्यादा इंजॉय करते हैं, लोग इसको कैरी करते हैं, और कैरी करने के साथ साथ लोग आपके हवाले से मस्बत रवैया लेके आते हैं। जब लोगों के जहन में आपके हवाले से एक पॉजिटिविटी बन जाए और पॉजिटिव रवैया बन जाए, तो समझे कि आपकी कीमत बहुत अच्छी लग चुकी है। तो जनाब लुब्बे लबाब ये है, कंक्लूजन ये है इस टॉपिक का, कि अगर आपकी कीमत कोई भी लगाना चाहता है तो वो आपको एक अच्छा आदमी समझे, वो आपको पॉजिटिव थिंकिंग वाला समझे, वो आपको अच्छे अखलाक वाला समझे, वो आपको मेहनती समझे। ये तीन चार खसलतें अगर वो आप में समझता है तो इसका मतलब है कि उसने आपकी प्राइस बहुत अच्छी ही लगाई है। और अगर आपने भी किसी की प्राइस लगानी है, किसी इंसान की कीमत आप लगाना चाहते हैं, अवल तो इंसान की कीमत नहीं है, तो फिर उसकी खूबियाँ एक बार देखिए, चार पांच ऐसी खूबियाँ, ऐसा क्रिटिसिज्म जो पॉजिटिविटी के हवाले से उसको हमेशा मोटिवेट रखे, उसको हमेशा सामने लेके आए, तो फिर ये क्रिटिसिज्म भी उसके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। तो जनाब ये था आज का टॉपिक कीमत, और इसके बाद एक ज़बरदस्त सी अनाउंसमेंट है हमारे पास, बिल्कुल इसको भी आप सुनिएगा, जहन नशीन कीजिएगा।

0: पूरे इंग्लैंड में जनाब हम जितना पानी यूज कर रहे हैं और पानी की हम बचत कैसे कर रहे हैं या पानी को हम सेव कैसे करना चाहते हैं, ये कैसे कर सकते हैं। लेट्स सेव वाटर एक जबरदस्ती नाम कैंपेन है, इस कैंपेन का हिस्सा बनिए और सुनिए जबरदस्त मैसेज को। स्टे ट्यून्ड विद फजा 97.1 FM.
1: In England, we're using water faster than nature can replace. If nothing changes, by 2055, we could face a daily water shortfall of more than 5 billion litres. And in Wales, wetter winters and drier summers are putting pressure on the water supply. Most of us think we use around 30 litres a day, but the reality is closer to 140 litres. We can all help to save water by making simple changes. Take shorter showers. Fix leaking taps or toilets using a washing up bowl instead of running tap, and switch to eco mode on your dishwasher or washing machine. Water is precious. To protect it, we all need to use less. Search Let's Save Water or visit letssavewater.com for easy ways to save water every day.

जी तो लिसनर्स वेलकम बैक, रेडियो फजा 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से आपका मेजबान नासिर खान है आपके साथ। और जनाब जबरदस्ती क्रिटिकल थिंकिंग पे जो खूबसूरत से एक पांच वेज थे हमारे फजा इंडिया ने, फजा की टीम ने आप लोगों को बताया था कि आप अपने क्रिटिक्स को थोड़ा सा मजीद डिवेलप कर सकें और आज के दिन ये सोच सकें, ये डिवेलप कर सकें अपनी माइंड सेट के मुताबिक कि आपने किसी की कदर कीमत कैसे लगानी है और अगर कोई आपकी कदर कीमत लगा चुका है तो फिर आपने उसको टैकल कैसे करना है। तो जनाब ये था आज का खूबसूरत सा गुड मॉर्निंग नॉटिंगम, आप लोग मेरे साथ रहे, बेहद शुक्रिया। आपको ये बताता चलूं कि जनाब कंक्लूजन करते हैं प्रोग्राम की, थोड़ा सा जनाब शामिल हुआ मैं आपके साथ और उसके बाद मैंने आपको गुड मॉर्निंग कहा, गुड मॉर्निंग के बाद आपको मौसम की सूरत हाल बताई। आज का टॉपिक था जनाब कीमत, बेशबहा कीमती इंसान कैसे होते हैं या कीमत कैसे लगाई जाती है, ये चीजें आपके सामने रखी गई। और इन चीजों के साथ साथ आपको ये भी बताया गया कि अगर आप अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, ये आप ये चाहते हैं कि आपकी कोई कीमत अच्छी सी लगाए, तो फिर उसके लिए सबसे पहले आपको खुद खूबसूरत होना पड़ेगा अंदर से भी और बाहर से भी। कुछ लोग खूबसूरती और खूबसूरती के दरमियान फर्क नहीं समझते, इस पे भी टॉपिक रखते हैं और इस टॉपिक को भी डिस्कस किया जाएगा। और उसके बाद जनाब हमारे साथ पर्सनैलिटी थी, पर्सनैलिटी ऑफ द डे जनाब स्टीफन हॉकिंस, द ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ द सेंचुरी, लास्ट सेंचुरी, इवन फर्स्ट 21st century, लेकिन जिस व्यक्ति को, जिस शख्सियत को, जिस पर्सनैलिटी को दुनिया ये कहती थी कि एक बेकार और बेकीमत आदमी है, उसने क्या क्या हमें जनाब तरीके बताए जिंदगी गुजारने के, और ब्लैक होल पे जो उनकी थ्योरी थी और सबसे ज़बरदस्त जो थी कि रिसर्च ऑफ यूनिवर्स, यानी यूनिवर्स की रिसर्च के ऊपर जो उन्होंने बुक लिखी जिसको 10 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने पसंद किया, उसको परचेज भी किया गया, यही वो कामयाबी थी जिससे लोगों ने स्टीफन हॉकिंस को एक नाकारा पर्सनैलिटी समझने से इनकार कर दिया, यानी कीमत उनकी बढ़ा दी उनकी मेहनत ने और उनकी हार्ड वर्किंग ने। ये वो बंदा है जिस बंदे को 8th standard तक पढ़ना भी सही तरह नहीं आता था। और उसके बाद ना मैं एंटरटेनमेंट के लिए कुछ ट्रैक्स आपके सामने शामिल किए गए और फजा आइडिया आपने सुना, उसके साथ लेट्स से वाटर की जबरदस्ती कंपेन हमारे पास मौजूद थी, ये सारी चीजें आपने ना गुड मॉर्निंग नॉटिंगम में सुनी। और आज का गुड मॉर्निंग नॉटिंगम हुआ जाता है समाप्त। अपने मेजबान नासिर खान को दीजिए इजाजत, कुछ ट्रैक्स आपके साथ छोड़े जा रहा हूं जो सिर्फ और सिर्फ आपको सुनने को मिलेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, लेकिन आप एंटरटेन हो जाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर 97.1 एफएम, एंजॉय कीजिए अपने दिन को मजीद ताकतवर और मजीद मोटिवेट रखने के लिए ये ट्रैक्स आपकी नजर। एंड गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय नॉटिंगम।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें राया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, राया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 नॉटिंघम या अभी रापता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: आरियाना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। आरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Center and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 Plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Center and Homeschooling Academy.

Assalamu alaikum, namaste, satsyakar, hello, hello, hello, a very beautiful, exciting plus charming morning. Aap sabhi listeners ke liye. लिसनर्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट आरजे ज़ैनब फातिमा और आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम दीवा डायलॉग, वो भी आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो फजा 97.1 FM पे। और जैसे कि आप सभी को मालूम है कि रेडियो फजा 97.1 FM ही है वो वाहिद प्लेटफॉर्म जहां आपको मिलती है इन्फॉर्मेशन, साथ ही साथ होती है मेरी और आपकी कम्युनिकेशन, और फिर प्रोग्राम में शामिल किए जाते हैं मजे मजे के ट्रैक्स, वो तमाम तर गाने जो हमारे लिसनर सुनना चाहते हैं, वो तमाम तर ट्रैक्स जो हमारे लिसनर हमें खुद ही सजेस्ट करते हैं। सो वेल लिसनर्स, हमेशा की तरह आज भी लेकर आई हूँ आप सभी के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, ऐसे टॉपिक जिसके ऊपर आप और हम मिलकर कर सकते हैं गुफ्तगू, साथ ही साथ आपके पसंदीदा फेवरेट खाने। सो वेल प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं क्योंकि अब से लेकर ठीक दो घंटे तक हम और आप रहने वाले हैं साथ साथ, ठीक 10 बजे से लेकर ठीक 12 बजे तक हम रहेंगे साथ साथ। सो ये

बैक वंस अगेन एक बार फिर से आप सभी सुनती हुई समातों को खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये खूबसूरत सा ट्रैक अच्छा लगा होगा। वेल ट्रैक सुनकर हमारे बहुत सारे लिसनर्स जो कि थोड़ी सी सुस्ती और काहली में मुब्तला होंगे, काफी हद तक फ्रेश और एनर्जेटिक फील कर रहे होंगे। सो वेल लिसनर्स, अब से आप बात कर लेते हैं उन सभी लिसनर्स की जिन्होंने अब तक इस खूबसूरत दिन का आगाज कर लिया है और वो इस वक्त रवा दवा है अपने आज के टास्क की जानिब, जैसे कि ऑफिस, यूनिवर्सिटी, स्कूल और भी बहुत सारी ऐसी जगह जहां आप हर रोज सुबह उठकर अपने डे का स्टार्ट करने के बाद जाते हैं। सो वेल लिसनर्स, अगर आप हैं इस वक्त रास्ते में या फिर पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन के करीब, सो आप बना सकते हैं इस सफर को मजीद खूबसूरत, मजीद मेमोरेबल। किस तरह से, आइए चलिए आपको बताती हूँ। सो वेल लिसनर्स, आप हमें ट्यून कर सकते हैं फजा टैप के थ्रू, ना सिर्फ आप हमें ट्यून कर सकते हैं, वहां पर दे सकते हैं हमारा साथ। सो जल्दी से कर लीजिए हमें ट्यून और इस ड्राइव को बनाइए मजीद खूबसूरत। और साथ ही साथ ये कि जब आप ड्राइव कर रहे हों तो आपने सबसे पहले बी केयरफुल एंड बी सेफ, क्योंकि ड्राइविंग इटसेल्फ इट्स अ रियली डिफिकल्ट टास्क। सो कोशिश यही किया करें कि जब आप ड्राइव कर रहे हों तो आप अपना पूरा फोकस ड्राइविंग पर रखा करें। आजकल जो हमारे ये सो कॉल्ड जेंजी हैं क्या करते हैं कि जस्ट फॉर फ्लेक्स रैश ड्राइविंग करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे नुकसान और हजरात का सामना करना पड़ता है। सो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि जब भी आप कभी ड्राइव कर रहे हों तो आप स्पीड स्लो रखा करें और हमेशा ये चीज़ अपने माइंड में रखा करें कि आपकी ज़िंदगी से बहुत से लोगों की ज़िंदगी मुंसलिक है। सो हो सकता है कि आपका एक गलत कदम किसी दूसरे की ज़िंदगी को मुतासर करे या फिर आपके अपने चाहने वालों की ज़िंदगी को काफ़ी बुरी तरह से अफेक्ट करे। सो इसके लिए कि आप एहतियात कीजिए और आराम से ड्राइव कीजिए। लिसनर्स, ये तो जरा हो गई हमारे उन तमाम लिसनर्स के लिए जो कि इस वक्त अपने दिन का बाकायदा तौर पर आगाज कर चुके हैं। वेल, अगर अभी भी कोई ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि स्टिल इसी थिंकिंग में हैं कि आखिर क्या आजकल दिन शुरू किया जाए या नहीं, सो उनके लिए कि आप जल्दी से इस दिन का स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि इंसान का वक्त बेहद कीमती होता है। सो कोशिश किया करें कि आप अपने वक्त को बिला वजह की ओवर थिंकिंग में कभी भी जाया मत किया करें, क्योंकि जब भी इंसान ओवरथिंक करता है तो उसको ऐसा लगता है कि चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं और काफ़ी सारी चीज़ें मेस्ड अप हो जाती हैं। सो मेरा मानना यह है कि अगर आपको कोई भी काम करना है तो बस जल्दी से उठकर उसे कर लीजिए, ना कि आप घंटों बैठकर सोचते रहें कि अच्छा मुझे ये करना है, किस तरह से करना है और कैसे स्टार्ट लेना है। सो वेल लिसनर्स, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हमेशा हर दिन की तरह हम आज के लिए भी लेकर आए हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक, एक ऐसा टॉपिक जो कि आपकी, मेरी, हम सभी की ज़िंदगी से काफ़ी हद तक रिलेट करता है, हमारी ज़िंदगी से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरा ख्याल है कि इसके मुतलिक इन्फॉर्मेशन जाना आपके लिए, मेरे लिए, हम सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। सो वेल, इस टॉपिक के ऊपर भी करेंगे डिस्कशन, बहुत सारी गपशप, लेकिन अभी अभी हमें एक बहुत ही खूबसूरत से ट्रैक की फरमाइश मौसूल हुई है। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम अपने लिसनर्स की तमाम तर फरमाइशों को पूरा करते हैं, सो आइए मिलकर सुनते हैं ये खूबसूरत सा ट्रैक। ट्रैक के उस पार हम स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक। सो तब तक के लिए आप इस खूबसूरत से ट्रैक को एंजॉय करिए।

0: の王様。
1: वेल उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये खूबसूरत ट्रैक अच्छा लगा होगा। वेल प्रोग्राम में वक्त हो चुका है अभी एक अदद कमर्शियल ब्रेक का, सो द लिसनर्स आगे बढ़ते हैं इस कमर्शियल ब्रेक की जानिब। आप सभी से मुलाकात होगी ब्रेक के उस पार, सो तब तक के लिए हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहें, बने रहें, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे हमारे आज के टॉपिक के ऊपर। सो स्टे ट्यून्ड टू द फजा 97.1 FM एंड वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ रियली शॉर्ट ब्रेक।

0: It's commercial time.
1: इंग्लैंड दे विच असीं पानी दी वरतों जिन्नी तेजी नाल कर रहे हां, कुदरत इस नूं उन्नी तेजी नाल नहीं पार सकती। जे कुछ ना बदलिया तां 2055 तक सानूं हर रोज 5 बिलियन लीटर तों वध पानी दी कमी दा सामना करना पै सकदा है। सर्दियां दे मुकाबले गर्मियां च पानी दी सप्लाई दा ज्यादा दबाव हुंदा है, यानी पानी दी वरतों वध हुंदी है। साडे विचों ज्यादातर सोचते ने कि असीं दिन विच लगभग 30 लीटर पानी वरतदे आं, पर असल च असीं 140 लीटर दे नेड़े आं। आओ कुछ साधारण तब्दीलियां करिए ते पानी दे बचाव दे विच मदद करिए। शावर विच घट समा लगाओ, लीक कर रहियां टूटियां या टॉयलेट नूं तुरंत ठीक करवाओ। लगातार चल रही टूटी दी बजाए पांडे तोन वाले बाउल दी वरतो करो, अते अपने डिशवाशर या वॉशिंग मशीन विच इको मोड दी वरतो करो। पानी अनमोल है, इस नूं बचाउण दे लई सानूं सारिआं नूं घट पानी वरतण दी लोड़ है। हर रोज पानी बचाउण दे आसान तरीके लई लेट्स सेव वाटर खोजो या letssavewater.com ते विजिट करो।
2: प्लानिंग टू अपग्रेड योर होम और बिजनेस स्पेस? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
3: What happened? You look very happy.
4: I have some fantastic news. My wife's got her visa.
3: Congratulations! That was very quick.
4: I was very lucky. I used the local visa experts.
3: Who helped you with the application?
4: AMH solicitors. They were brilliant, friendly, fast, and very responsive. And best of all, they deal with all sorts of visas, extensions, indefinite leave to remain, and citizenship applications.
3: Where is AMH solicitors based?
4: Nottingham Road, New Basford, Nottingham.
3: Brilliant! I will contact them to help my family's visa.
4: Sure. Their number is 0115-671-3677 and they are in Pure Gym building. So, parking is available and they also offer free initial consultation.
5: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115 671 3677.
6: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at...
7: Welcome back once again, एक बार फिर से आप सभी सुनती हुई समातों को खुश आमदीद। तो लिसनर्स, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम दीवा डायलॉग और मैं हूँ आपकी मेजबान आरजे ज़ैनब फातिमा। जैसा कि कमर्शियल ब्रेक से पहले मैंने आपसे कहा था कि ब्रेक से वापसी पर आपसे शेयर करूंगी हमारा आज का टॉपिक। सो हमारा आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ना सिर्फ इम्पोर्टेंट है बल्कि इमोशनली भी बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। सो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। सो आवर टुडेज टॉपिक इज फॉरगिव एंड फॉरगेट, यानी कि द साइकोलॉजी ऑफ लेटिंग गो। जी तो लिसनर्स, हम अक्सर अपनी डेली कॉन्वर्सेशंस पे कहते हैं फॉरगिव एंड फॉरगेट, जो हो गया उसे भूल जाओ और जिंदगी में आगे बढ़ो। लेकिन क्या ह्यूमन माइंड वाकई ही इतनी आसानी से पेनफुल एक्सपीरियंसेस को फॉरगेट कर सकता है? क्या फॉरगिवनेस का मतलब अपने साथ होने वाले उन तमाम तर इनजस्टिस को एक्सेप्ट कर लेना होता है? और क्या अगर कोई इंसान रिपीटेडली हमारा ट्रस्ट डैमेज करता है तो हर बार उसे माफ़ कर देना इमोशनल मेच्योरिटी होती है या नहीं? कभी कभार डिस्टेंस मेंटेन करना ज़्यादा सेंसिबल डिसीजन होता है या नहीं? सो ये वो तमाम तर पर्सनल क्वेश्चंस हैं जिनको हम अक्सर औकात माइंड में सोचते हैं जब हम ये टर्म सुनते हैं फॉरगिव एंड फॉरगेट। क्योंकि ये क्वेश्चन सिर्फ पर्सनल रिलेशनशिप तक लिमिटेड नहीं है, इनका ताल्लुक वर्क प्लेस, कॉन्फ्लिक्ट, फैमिली डायनामिक्स, फ्रेंडशिप, लीडरशिप और सोशल बिहेवियर, इन तमाम तरह चीज़ों से होता है। सो आज ज़रा हम इस टॉपिक को इसलिए डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि हमारे लिसनर्स का इस टर्म को लेकर क्या ओपिनियन है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं और क्या आपको ऐसा लगता है कि हर बार किसी दूसरे इंसान को चांस देना चाहिए या नहीं। वेल लिसनर्स, इसके ऊपर करेंगे डिस्कशन, लेकिन फिलहाल प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक खूबसूरत ट्रैक को शामिल करने का। सो आइए मिलकर सुनते हैं ये ट्रैक। ओवर ट्रैक के उस पार पे हमसे बात करेंगे कि साइकोलॉजी में फॉरगिवनेस इसे किस तरह से देखा जाता है और बेसिकली ये टर्म कहाँ यूज होती है।

अच्छे तो लिसनर्स, कैसा लगा आपको ये खूबसूरत ट्रैक? सो वापस से कंटिन्यू करते हैं हमारे टॉपिक को। जैसा कि हमने डिस्कस करना था कि साइकोलॉजी में फॉरगिवनेस को किस तरह से देखा जाता है। सो फॉरगिवनेस एक टर्म है जिसे साइकोलॉजी में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इमोशनल और कॉग्निटिव प्रोसेस के तौर पर देखा जाता है। सो इस प्रोसेस में इंसान अपने हर्ट, एंगर और इन तमाम तर इमोशंस को समझने के बाद उनके साथ अपने रिलेशनशिप को काफ़ी हद तक चेंज करने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात समझना आपके लिए, मेरे लिए, हम सभी के लिए ज़रूरी है कि फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं कि आप किसी के भी एक्शंस को मॉरली एक्सेप्ट कर लें। अ पर्सन कैन एक्नॉलेज रॉन्ग डूइंग विदाउट अलाउइंग दैट रॉन्ग डूइंग टू डोमिनेट देयर फ्यूचर। और शायद यही पॉइंट पर फॉरगिवनेस की रियल कॉम्प्लेक्सिटी हम सभी के सामने आती है। हम किसी को माफ़ करने का डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन ट्रस्ट को रिस्टोर करना ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि जब हमारे साथ किसी ने कुछ बुरा किया होता है सो उससे हमारे इमोशंस हर्ट होते हैं, और साथ ही साथ वो तमाम तरह एक्सपेक्टेशंस जो हमने किसी भी इंसान के साथ वाबस्ता की होती हैं। सो एट दिस पॉइंट जब वो आपको हर्ट करता है, आपको फील होता है कि समवन इज़ ब्रेकिंग योर ट्रस्ट, तो आपके लिए मुश्किल हो जाता है कि आप वक्ती तौर पर उससे माफ़ कर देंगे, आप वापस से उनके साथ अपने ताल्लुकात को अच्छा कर लेंगे, लेकिन क्या वापस से ट्रस्ट बिल्ड होगा? नहीं। कभी कभार ऐसा होता है कि हम दोबारा से उन लोगों पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हम पास को एक्सेप्ट कर सकते हैं लेकिन उसे भुलाना हमारे कंट्रोल में कभी भी नहीं होता। सो आज के डिस्कशन में हम फॉरगिवनेस को सिर्फ एक मॉरल वर्चू के तौर पर नहीं देखेंगे, बल्कि एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस, इंटरपर्सनल डिसीजन और प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स के तौर पर एग्जामिन करेंगे। सो सबसे पहले हम आज के फर्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। व्हाट डज इट एक्चुअली मीन टू फॉरगिव समवन? सो सबसे पहले फॉरगिवनेस और फॉरगेटिंग के दरमियान एक कंसेप्चुअल डिफरेंस समझते हैं। सो साइकोलॉजिकल लिटरेचर में फॉरगिवनेस को आमतौर पर किसी हर्टफुल एक्सपीरियंस के बाद अपने इमोशंस, बिहेवियर और उन तमाम तरह रिस्पॉन्स में तब्दीली के प्रोसेस के तौर पर देखा जाता है और समझा जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक मिसाल मैं आप सबसे शेयर करती हूँ। अगर किसी ने आपके साथ अनफेयर बिहेवियर किया है तो नेचुरली आप एंगर, डिसअपॉइंटमेंट या डिस्ट्रस्ट फील कर सकते हैं। फॉरगिवनेस के प्रोसेस में आप धीरे धीरे इस एक्सपीरियंस को प्रोसेस करते हैं, अपने रिस्पांस को इस तरह चेंज करने की कोशिश करते हैं कि रिसेंटमेंट आपके डिसीजन पर गैर ज़रूरी कंट्रोल ना कर सके। सो बेसिकली ये प्रोसेस थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है और हर पर्सन के लिए ये प्रोसेस काफ़ी हद तक डिफरेंट होता है। अब से आप बात कर लेते हैं व्हेन द माइंड कीप रिवाइजिंग द पास्ट। सो साइकोलॉजी में एक टर्म है कि जब भी कभी कोई आपके साथ बुरा करता है या फिर आप के साथ कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है तो उस सूरत में आप किस तरह से आपका माइंड पास्ट को रिवाइज करता है। सो बेसिकली इस टर्म के लिए हम एक सिंपल सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं रूमिनेशन। सो रूमिनेशन का मतलब है किसी अपसेट एक्सपीरियंस, नेगेटिव थॉट को बार बार मेंटली रिवाइज करना, अक्सर बिना किसी प्रोडक्टिव सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए। इमेजिन करें कि आपके कॉलेज या फिर फ्रेंड्स ग्रुप में आपको किसी ने क्रिटिसाइज किया है, मीटिंग ख़त्म हो चुकी है या फिर आपका हैंग आउट ख़त्म हो चुका है, लेकिन आप घर जाकर भी उस कॉन्वर्सेशन को रिपीट कर रहे हैं। आप सोचते हैं कि उसने ऐसा क्यों कहा, क्या दूसरे लोग भी आपके बारे में ऐसा ही सोचते हैं, क्या आपको उस वक्त उसे जवाब देना चाहिए था या नहीं। यहाँ प्रॉब्लम सिर्फ ओरिजिनल इंसिडेंट नहीं रहता, उस इंसिडेंट के बारे में कॉन्टिन्यूस थिंकिंग भी कभी कभार प्रॉब्लम बन जाती है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है कि हर पेन मेमोरी रिमिनेशन नहीं होती। कभी किसी एक्सपीरियंस पर रिफ्लेक्ट करना लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग में मदद देता है। सो डिफरेंस ये है कि रिफ्लेक्शन आपको अंडरस्टैंडिंग की तरह लेके जाता है, जबकि ये आपको रिपीटेडली उस ही एक लूप और साइकिल में घुमाता रहता है। लिसनर्स, ये तो हो गया वो तमाम से रिएक्शन एंड द रिस्पॉन्स जो आप फील करते हैं या फिर जब कभी आपके साथ कोई अनसर्टेन सिचुएशन पेश आती है। अब से आप बात कर लेते हैं कि फॉरगिवनेस एंड वेल बींग, इन दोनों के दरमियान आखिर क्या रिलेशन है। सो अब जरा इसकी जानिब बढ़ते हैं।
सो फॉरगिवनेस पर साइकोलॉजिकल रिसर्च ने इस बात को एक्सप्लोर किया है कि फॉरगिविंग रिस्पॉन्सेज और इमोशनल वेलबींग के दरमियान जो रिलेशन है वो काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग है. सो कुछ स्टडीज और फॉरगिवनेस बेस्ड इंटरवेंशन में पार्टिसिपेंट को स्ट्रेस और इमोशनल डिस्ट्रेस में इम्प्रूवमेंट रिपोर्ट की गई है. लेकिन अगर हम फाइंडिंग्स को केयरफुली इंटरप्रेट करना चाहें, हर स्टडी का रिजल्ट एक जैसा कभी भी नहीं होता और फॉरगिवनेस हर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का यूनिवर्सल ट्रीटमेंट नहीं हो सकता. इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होता है? अगर कोई एक्सपीरियंस आपको इमोशनली डिस्टर्ब कर रहा हो, कभी कभार होता है कि आपके लिए फॉरगिव करना आसान नहीं होता, लेकिन ज़रूरत पर सपोर्टिव रिलेशनशिप्स, कंसोलिंग और दूसरे एविडेंस बेस्ड मेथड यहाँ पर बहुत काम कर सकते हैं. हमें फॉरगिवनेस को एक ऑप्शन के तौर पर समझना चाहिए, ना कि हर हर्ट पर्सन पर इम्पोज करने की जगह इसे शामिल कर लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि सर्कमस्टांसेस कुछ इस तरह से हो जाते हैं कि जब व्हेन समवन इज हर्टिंग अस तो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि हम उसे फौरी तौर पर माफ़ कर दें या फिर फॉरगिव कर दें. लेकिन ओवरऑल फॉरगिव करना अच्छी बात होती है. अगर आप किसी को माफ़ कर देते हैं तो इससे दिल हल्का हो जाता है, इंसान लो फील करता है, और क्योंकि गुस्सा तो इंसान का वक्ती होता है और वक्ती इमोशंस वक्त के साथ साथ ख़त्म हो जाते हैं. सो वेल लिसनर्स, यहाँ पर मुझे एक बहुत ही खूबसूरत सी बात याद आ गई. सोचा कि क्यों ना इसे आपके साथ भी शेयर करूँ. एक बहुत ही आला हस्ती ने कहा था कि कभी भी बेवकूफ़ इंसान वो होता है जो कि इस दुनिया में एक पत्थर से दो बार टकराता है. इट मीन्स कि अगर आप किसी के साथ हैं एज अ फ्रेंड, एज अ कोलीग या फिर किसी भी एस्पेक्ट में, और समवन इज हर्टिंग योर इमोशंस, योर फीलिंग्स, तो आपको मालूम हो चुका है कि इस इंसान ने एक मरतबा आपको हर्ट किया है. माइट बी पॉसिबल कि वो आपको दोबारा भी हर्ट कर सकता है. मेक श्योर यही करें कि अगर कोई आपको डिसअपॉइंट करता है या फिर कोई आपको हर्ट करता है, आप अपनी बाउंड्रीज सेट कर लें और फिर आप इस पे फोकस करें कि आपकी बाउंड्रीज को कोई भी दोबारा ब्रेक ना कर सके. और नेवर ट्रस्ट द पर्सन जो आपको एक बार हर्ट करे, क्योंकि जो एक बार हर्ट कर सकता है उसके लिए मुश्किल नहीं होता कि वो आपको दोबारा हर्ट करे. वेल लिसनर्स, ये तो मेरी एक छोटी सी एडवाइस थी. वेल इस हवाले से आपका क्या कहना है, फॉरगिव एंड फॉरगेट के हवाले से, द साइकोलॉजिकल आर्ट ऑफ लेटिंग गो, क्या आपके लिए आसान होता है किसी भी इंसान को माफ़ करना? खास तौर पर किसी ऐसे इंसान को जिसने आपके साथ ज़िंदगी में कभी कुछ बुरा किया हो, कुछ ऐसा जो आपने एक्सपेक्ट ना किया हो. इस हवाले से आपका क्या ओपिनियन है? आप अपना ओपिनियन हमारे साथ शेयर करें हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर 01157100971 इसके थ्रू. वेल अभी प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक खूबसूरत ट्रैक को शामिल करने का, क्योंकि बातों के साथ साथ ट्रैक्स का सिलसिला भी जारी रखना जरूरी है ताकि हमारे लिसनर्स बिल्कुल भी बोर ना हो. सुनते हैं ये ट्रैक, ट्रैक के इस बार यहीं से कंटिन्यू करते हैं हमारे आज के टॉपिक में.

0: से तो लिसनर्स, अब से आप बात करते हैं फॉरगिवनेस वर्सेस रिकंसिलिएशन। सो बेसिकली अब देखेंगे कि इन दोनों में आखिर डिफरेंस क्या होता है। यहाँ पर हम एक साइंटिफिक और इंटरपर्सनल डेस्टिनेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि है फॉरगिवनेस, और साथ में आ जाता है रिकंसिलिएशन। दोनों सेम प्रोसेस होता है या नहीं ये तो आप मुझे बताइएगा, लेकिन मैं आपसे शेयर करती हूँ जो मुझे मालूम है इसके मुतालिक। सो बेसिकली फॉरगिवनेस एक इंडिविजुअल के इमोशनल रिस्पॉन्सेज से रिलेटेड हो सकता है, लेकिन रिकंसिलिएशन का मतलब होता है रिलेशनशिप को दोबारा इस्टेब्लिश या फिर रिपेयर करना, जिसके लिए आमतौर पर दोनों इंडिविजुअल को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ता है। सो मेरे ख्याल से दोनों काफ़ी हद तक डिफरेंट चीज़ें होती हैं, क्योंकि फॉरगिवनेस का सिंपल मतलब ये है कि समवन इज़ हर्टिंग यू, या फिर कभी कभार ऐसा हो जाता है कि कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं हमारी ज़िंदगी में जो कि हमें अच्छे नहीं लगते। सो इस सूरत में हम उनको माफ़ कर देते हैं वक्त के साथ साथ, क्योंकि वक्त के साथ साथ चीज़ें पुरानी हो जाती हैं और फिर हम उन चीज़ों को उस तरह से नहीं वैल्यू करते और वक्त के साथ साथ हम उन बातों को भूल जाते हैं। लेकिन रिकंसिलिएशन एक ऐसी टर्म है जहां आप किसी भी टूटे हुए बॉन्ड को या फिर रिलेशनशिप को दोबारा से इस्टेब्लिश करते हैं। अच्छा, ये तब होता है जब दो लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है या फिर समटाइम्स बहुत ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ जाता है। सो इस सूरत में अगर दोनों पार्टिसिपेंट इक्वली पार्टिसिपेट करें, एक दूसरे को इक्वली वैल्यू करें, तो उस सूरत में हम इसको कर सकते हैं। तो दोनों मेरे ख्याल से काफ़ी डिफरेंट टर्म्स हैं। तो मैं आपसे शेयर करती हूँ, सो बेसिकली इसके एक सिंपल सी मिसाल यहाँ मैं आपसे शेयर करती हूँ। अगर किसी ने अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं की, यानी कि वो खुद को अकाउंटेबल नहीं समझता, अपने बिहेवियर को चेंज नहीं करता, तो रिलेशनशिप रिपेयर करना काफ़ी हद तक डिफ़िकल्ट हो सकता है। इसीलिए फॉरगिवनेस को ट्रस्ट रिस्टोरेशन के बराबर समझना एक बहुत ही कंसेप्चुअल मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि फॉरगिवनेस मे बी अ पर्सनल डिसीजन बट रिकॉन्सिलेशन रिक्वायर्ड अ रिलेशनशिप लेवल डिस्कशन। और ये डिफरेंस प्रोफेशनल लाइफ से लेकर पर्सनल लाइफ तक आपके तमाम तर रिलेशनशिप्स के लिए इक्वली रिलेवेंट होता है। सो वेल लिसनर्स, अब से आप बात करते हैं कि कभी कभार हमें जो बिट्रेल का सामना करना पड़ता है उसमें वो बहुत ज़्यादा हर्टफुल क्यों होता है हम सब के लिए। वाई बिट्रेल हर्ट्स मोर देन द ऑर्डिनरी डिसअपॉइंटमेंट। सो इसके ऊपर अब हम ज़्यादा तफसील से डिस्कशन करते हैं। सो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, इंटरेस्टिंग प्लस यूनिक साइकोलॉजिकल क्वेश्चन है। किसी स्ट्रेंजर की क्रिटिसिज्म और किसी क्लोज फ्रेंड की क्रिटिसिज्म, आखिर इन दोनों में इतना डिफरेंस क्यों होता है? इसका एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन या फिर कोई सिंपल सा आंसर हो सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो अगर हम इस टर्म को साइकोलॉजिकली देखें तो दोनों काफ़ी हद तक एक दूसरे से डिफरेंट हैं, क्योंकि फर्स्ट में आपको एक रैंडम पर्सन ने क्रिटिसाइज़ किया है, एक ऐसा इंसान, एक ऐसा पर्सन जिसे ना तो आप जानते हैं ना आप उससे मिले हैं। अगर ऐसा कोई इंसान आपको क्रिटिसाइज़ करता है तो आपको क्यों इतना बुरा नहीं लगता? उसके बरक्स अगर आपका कोई क्लोज वंस, आपका कोई फ्रेंड या कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आपने बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस वाबस्ता की थी, अगर वो करता है तो क्यों आपको ज़्यादा बुरा लगता है? सो आइए इस टर्म को ज़रा तफसील से समझने की कोशिश करते हैं। फिलहाल प्रोग्राम में वक्त हो चुका है एक अदद कमर्शियल ब्रेक का। सो वेल लिसनर्स, अभी के लिए तो हमें इस कमर्शियल ब्रेक की जाने बढ़ना होगा, लेकिन जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम इस टर्म को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर आपके साथ, मेरे साथ, हम सब के साथ ऐसा क्यों होता है कि जब हमारा बहुत ही कोई करीबी चाहने वाला हमें डिमोटिवेट करता है तो हमें बहुत बुरा लगता है। उसके बरक्स अगर कोई ऐसा इंसान जिसे हम ना जानते हों ना हम मिले हों, वो हमें हमारे साथ ऐसा कुछ भी करे तो हमें इतना बुरा महसूस नहीं होता। सो फिलहाल के लिए लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ रियली शॉर्ट ब्रेक। सो स्टे ट्यून्ड टू द फजा 97.1 FM। हम बस यूं गए और यूं आए।
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले। ইংল্যান্ডে প্রকৃতি যে হারে পানি যোগান দেয়, এর চেয়ে দ্রুত গতিতে আমরা পানি ব্যবহার করছি। যদি কিছু পরিবর্তন না হয়, তবে 2055 সালের মধ্যে আমরা দৈনিক 5 বিলিয়ন লিটারেরও বেশি পানির ঘাটতির মুখোমুখি হতে পারি এবং ওয়েলসে আর্দ্রতর শীতকাল এবং শুষ্কতর গ্রীষ্মকাল আমাদের পানি সরবরাহের উপর চাপ সৃষ্টি করছে। আমাদের বেশিরভাগই মনে করি যে আমরা দিনে প্রায় 30 লিটার পানি ব্যবহার করি, তবে বাস্তবে এর পরিমাণ 140 লিটারের কাছাকাছি। আমরা সবাই সহজ কিছু পরিবর্তনের মাধ্যমে পানি সাশ্রয়ে সহায়তা করতে পারি। বেশিক্ষণ ধরে শাওয়ার করবেন না, ফুটো হওয়া ট্যাপ বা টয়লেটগুলি মেরামত করুন, ট্যাপের পানি ছেড়ে রাখার পরিবর্তে একটি ধোয়া পাকলার বাটি ব্যবহার করুন এবং আপনার ডিশওয়াশার বা ওয়াশিং মেশিন ইকো মোডে চালু করুন। পানি মূল্যবান, এটি রক্ষা করার জন্য আমাদের সবার উচিত কম কম করে পানি ব্যবহার করা। প্রতিদিন পানি বাঁচানোর সহজ উপায়গুলো কি কি তা জানার জন্য আসুন পানি বাঁচাই, লেটস সেভ ওয়াটার সার্চ করুন অথবা letssavewater.com এই সাইটটি দেখুন।
2: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
3: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
4: जी, मैं कहाँ हो सकता हूँ? या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
3: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
4: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
3: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
4: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
5: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
3: Park Foods, जो नाम है मायार का।

Table listeners, अभी प्रोग्राम में वक्त हो चुका है अगले सेगमेंट की जाने बढ़ने का, विच इज कॉल्ड द स्पाइस किचन, जहां हर दिन हम डिस्कस करते हैं बहुत ही न्यू चटपटी मजेदार सी रेसिपीज। लेकिन उससे पहले प्रोग्राम में वक्त हो चुका है एक अदद कमर्शियल ब्रेक का। सो फिलहाल के लिए तो हमें इस कमर्शियल ब्रेक की जाने बढ़ना होगा। आप सभी से मुलाकात होगी कमर्शियल ब्रेक के उस पार। सो तब तक के लिए आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें और हमें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहें। Let's take a short break and we will be right back after a really short break. So stay tuned to the Fuzza 97.1 FM.

बैक वंस अगेन एक बार फिर से तमाम तरह सुनती हुई समातों को खुश आमदीद। सीधा लिसनर्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट आरजे ज़ैनब फातिमा और आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम दीवा डायलॉग, सिर्फ और सिर्फ आपके अपने पसंदीदा फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो फजा 97.1 FM पे। जैसा कि प्रोग्राम में वक्त हो चुका है अगले सेगमेंट की जानब बढ़ने का, जो कि है द स्पाइस किचन, जहां हर दिन हम बात करते हैं न्यू चटपटी रेसिपीज की, मजेदार खानों की। लेकिन द बेस्ट थिंग इज कि हम वो तमाम तरह रेसिपीज आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं, जो कि बिना एफर्ट्स के जल्दी से रेडी हो जाए, ताकि हमारी जितनी भी रिवाज है उनको ज्यादा एफर्ट्स ना करनी पड़े और वो झटपट बनाए कुछ अलग, कुछ मुनफरिद और कुछ यूनिक। सो हमेशा की तरह आज भी मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही मजेदार सी रेसिपी। रेसिपी थोड़ी सी लेंथी है लेकिन है बहुत ही टेस्टी। सो जल्दी से जितनी भी हमारी डीवाज हैं, हमारी फीमेल लिसनर्स हैं और साथ ही साथ हमारे जितने भी मेल लिसनर्स हैं जो कि इस वक्त हमें ट्यून कर रहे हैं, जल्दी से आप अपनी नोटबुक कॉपी पेंसिल रेडी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ हमारी आज की मजेदार सी रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स। सो जस्ट इन केस कि आपसे कुछ मिस ना हो, इसके लिए आप जल्दी से प्रिपेयर हो जाएं। सो वेल लिसनर्स, आप सभी को बताती चलती हूँ हमारी आज की जो रेसिपी है जो कि मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, वो बहुत ही ज्यादा फेमस है इन रूरल एरियाज, लेकिन प्लस बहुत ही ज्यादा डिलिशियस है। सो आज हम बनाने जा रहे हैं बलोची स्टाइल चिकन सच्ची, जो कि बाहर से बहुत क्रिस्पी, अंदर से बहुत ही ज़्यादा जूसी, स्मोकी फ्लेवर्स के साथ होगी और होगी भी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। सो जल्दी से रेडी कर ली थी अपनी डायरी, जितनी देर में आप रेडी होते हैं उतनी देर में हम सुन लेते हैं एक अदद खूबसूरत सा ट्रैक से वापसी पे फिर स्टार्ट करेंगे इनग्रीडियंट लिस्ट को।

सो वेल लिसनर्स, बढ़ते हैं आज के इंग्रेडिएंट लिस्ट के जानिब। सो चिकन सब्जी को बनाने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स हमें दरकार हैं वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। सो इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए चिकन 1 kg, या फिर आप यू भी कर सकते हैं कि आप 1 whole kg ले सकते हैं। सेकेंड इंग्रेडिएंट इज 2 tablespoons लेमन जूस, साथ ही साथ 2 tablespoons कुकिंग ऑयल, 1 tablespoon जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1.5 teaspoon नमक, या फिर आप नमक हसब ज़रूरत हसब जायका अपने टेस्ट बड्स के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं, 1 tablespoon ब्लैक पेपर, 1 teaspoon रेड चिली पाउडर, 1 teaspoon रोस्टेड क्यूमिन पाउडर एंड 1.5 tablespoon कोरिएंडर पाउडर, 1.5 tablespoon गरम मसाला, 1.5 tablespoon पेपरिका पाउडर। सो ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं अच्छा लगता पेपरिका टेस्ट तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं इसे रेसिपी में शामिल कर रही हूँ क्योंकि इससे बहुत अच्छा कलर और अरोमा आता है। सो वेल लिसनर्स, ये वो तमाम तरह इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हम चिकन के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब चिकन को जूसी और क्रिस्पी बनाने के लिए हम क्या चीज़ें इस्तेमाल करेंगे वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। हम इस्तेमाल करेंगे 2 tablespoons मेल्टेड बटर या फिर ऑयल, 1 tablespoon लेमन जूस, 1.5 tablespoon ब्लैक पेपर, अ पिंच ऑफ सॉल्ट। और अब बात आ जाती है सच्ची राइस के लिए। सो चावलों के लिए हम इस्तेमाल करेंगे 2 cups बासमती राइस, 1 small onion स्लाइस्ड, 2 tablespoons कुकिंग ऑयल, 1 small सिनेमन स्टिक, 2 से 3 अदद ग्रीन कार्डिमंस, 3 से 4 अदद लौंग, नमक हसब ज़रूरत हसब जायका, 3 cups वाटर जिसको हम शामिल करेंगे चावलों की वैरायटी के मुताबिक, आप इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं। सो अब ज़रा बात कर लेते हैं सर्विंग के लिए। सो सर्विंग के लिए हम ग्रीन चटनी या फिर फ्रेश लेमन जूसेस को ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये क्या करेगा, टेस्ट को इन्हेंस कर देगा और ओवरऑल आपकी रेसिपी बहुत अच्छी लगती है जब आप उसे मिंट चटनी के साथ ट्राई करें या फिर हल्का सा लेमन स्क्वीज करके। सो वेल लिसनर्स, ये थे वो सभी इंग्रेडिएंट्स जिनकी मदद से आज हम बनाएंगे ये बलूचिस्तान स्टाइल चिकन सब्जी। सो अब जरा प्रोसीजर की जानिब बढ़ते हैं। सो सबसे पहले हम कर लेंगे चिकन को मैरिनेट। किस तरह से मैरिनेट करना है आइए मैं आपको बताती हूँ। सो वेल चिकन को सबसे पहले क्लीन कर लेंगे पेपर या फिर टॉवल की मदद से अच्छी तरह से ड्राई कर लेंगे। फिर बारी आती है चिकन के ब्रेस्ट लेग्स, इन पर हल्के से कट्स लगाने की। सो ये कट्स हम इसलिए लगाएंगे ताकि मसाला अंदर तक शामिल हो जाए और मसाले का फ्लेवर पूरे चिकन में से आए। अब साथ ही साथ हम ये करेंगे कि एक छोटा सा बाउल ले लेंगे जिसमें हम शामिल करेंगे लेमन जूस, कुकिंग ऑयल, जिंजर गार्लिक पेस्ट, नमक, ब्लैक पेपर, रेड चिली, क्यूमिन, कोरिएंडर और गरम मसाला। सो ये तमाम तरह स्पाइसेस मिक्स करेंगे अच्छी तरह से लेमन जूस के साथ। अब हम ये करेंगे कि ये मसाला चिकन के ऊपर और उसके कट्स के अंदर अच्छी तरह से शामिल कर देंगे। सो इससे ये होगा कि अच्छी तरह से हमने इसे ऐड करना है ना सिर्फ ऊपर बल्कि कट्स के अंदर भी, ताकि मसाले का फ्लेवर अंदर तक शामिल हो और हमारा चिकन बहुत ही ज़्यादा जूसी और टेंडर बने। अब हम ये करेंगे कि चिकन को अच्छे से कवर करके रेफ्रिजरेटर में कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए रख देंगे। वेल ये तो मैक्सिमम टाइम मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, अगर हम मिनिमम टाइम की बात करें तो आप 2 से 3 घंटे भी इसे रख सकते हैं। सो बेस्ट फ्लेवर्स के लिए तो आप इसे ओवरनाइट भी मैरिनेट करके रख सकते हैं। इससे ये होगा कि जितनी ज़्यादा देर आप मैरिनेशन को देंगे उतना ही ज़्यादा टेस्टी, फ्लेवरफुल और जूसी आपका चिकन बनेगा। सो अब जहाँ बारी आ जाती है मैरिनेशन के बाद इसे कुक करने की। सो अब हम ओवन को 200 degrees Celsius पर प्री हीट कर लेंगे और इसमें हम मैरिनेटेड चिकन को रोस्टेड ट्रे में अच्छी तरह से असेंबल करके रख देंगे। चिकन को फूड सेफ किचन ट्विन से टाई करना ऑप्शनल है। आप चिकन को अप्रॉक्सीमेटली 60 to 80 minutes तक रोस्ट करें। कुकिंग टाइम चिकन के साइज़ और ओवन पर भी डिपेंड कर सकता है। सो आप देख लीजिएगा कि जिस
हिसाब से आपकी क्वांटिटी हो उस हिसाब से आप उसे शामिल कर लीजिएगा। टाइम को आप थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हैं। आप ये कर सकते हैं कि हर 20 मिनट्स के बाद आप मेल्टेड बटर या ऑयल या फिर लेमन जूस को मिक्सर ब्रश से आप उसके ऊपर लगा सकते हैं। जब चिकन हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए, उसकी डोन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए, तो साथ ही साथ आप उसे चेक करते रहें। सो चिकन का सबसे थिक हिस्सा ब्रेस्ट और थाइस होते हैं। सो आपने इंटरनल टेम्परेचर कम से कम 74 डिग्री सेल्सियस रखना है। सिर्फ कलर देखकर चिकन को कुक ना समझें। अगर स्किन ज़्यादा ब्राउन हो रही हो और चिकन अभी भी अंदर से कुक ना हो, तो टेम्परेचर थोड़ा कम कर दें और रोस्टेड कंटिन्यू रखें। सो वेल लिसनर्स, ये तो हो गया कि किस तरह से आप माइक्रोवेव ओवन की मदद से चिकन सची बना सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास माइक्रोवेव ओवन ना हो, तो आप दूसरी सूरत में दूसरे ऑप्शंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आइए वो भी मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। अगर ओवन नहीं है आपके पास, तब आप ये डिलिशियस सची किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले आपने हैवी बॉटम डेगची में एक स्टैंड या फिर हीट सेव रैक रख लेना है, ताकि चिकन सीधा बॉटम को टच ना करे। फिर उसके बाद आपने मैरिनेटेड चिकन को रैक पर रख देना है और आपने अपने बर्तन का जो लिड है उसे ऊपर से टाइटली कवर कर लेना है। बहुत हल्की आंच पर आप इसे कुक करें और ज़रूरत पर हीट सेफ सेटअप के मुताबिक कुकिंग चेक करते रहे। चिकन के जूसेस और टेम्परेचर चेक करें। चिकन को कम्प्लीटली कुक्ड होने तक पकाएं। याद रखिएगा कि इस पूरे टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। सो आपने मेक श्योर करना है कि आपने इसे किसी ऐसे दिन ट्राई करना है जिस दिन आपके पास बहुत ज़्यादा वक्त हो या फिर आपकी पूरी फैमिली एक साथ हो। थर्मामीटर पर 74 डिग्री सेल्सियस ज़रूर अचीव करें। साथ ही साथ आखिर में आप बटर ब्रश करके अगर अवेलेबल हो ओवन या एयर फ्रायर में कुछ मिनट इसे रोस्ट कर ले, ताकि बाहर की लेयर बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हो जाए। सो वेल लिसनर्स, ये देखें मैंने आपसे दोनों तरीके शेयर कर दिए। अगर आपके पास ओवन है, तब भी आप इस बलूचिस्तान स्टाइल चिकन सची को बना सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ओवन नहीं है, तो इस सूरत में आप किसी भी बड़े बर्तन की मदद से इस रेसिपी को बना सकते हैं। अब जरा बात कर लेते हैं सजी राइस बनाने का तरीका। सो ये तो बिल्कुल बेसिक सिंपल राइस होता है, जैसे कि हम कोई से भी राइस बनाते हैं, लेकिन वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। सबसे पहले आप चावलों को अच्छी तरह से धो लें, 20 से लेकर 30 मिनट तक सोख करके रख दें। फिर आप एक बर्तन में कुकिंग ऑयल को गर्म कर लें, साथ ही साथ उस पर शामिल कर दें प्याज। प्याज को हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएं। सो जैसे ही आपका प्याज हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए, तो वो तमाम तरह गर्म मसाले जो कि मैंने आपसे शेयर किए थे, जिसमें सिनेमन, कार्डिमन और लौंग, साथ ही साथ तेज पत्ता, इन तमाम तरह इंग्रेडिएंट्स को शामिल कर दें। साथ ही साथ आप पानी और नमक भी इसमें शामिल कर दें। अब सोख राइस को इसमें ऐड करें और चावलों की वैरायटी के मुताबिक आप इसे कुक कर लें। जब तक आपके चावल खिले खिले लगें और पानी अब्सॉर्ब ना हो जाए, तब तक आप इसे पकाएं। आखिर में 5 से लेकर 10 मिनट तक दमा लगा दें और फिर फोक की मदद से चेक कर लें और मज़ेदार से आपके ये चावल तैयार हो जाएंगे। सो वेल लिसनर्स, ये थी हमारी आज की मज़ेदार सी बलूचिस्तान स्टाइल चिकन सची, साथ ही साथ मज़ेदार से हमारे राइस जो कि सची को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और इनके बिना हमारी सची अधूरी लगती है। अब मैं आपसे शेयर करती हूँ मज़ेदार सी ग्रीन चटनी की रेसिपी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपका मेन कोर्स बहुत ही ज़्यादा शानदार हो। सो इसके लिए फ्रेश ग्रीन चटनी बनाने के लिए आपने 1 कप फ्रेश कोरिएंडर ले लेना है, साथ ही साथ 1.5 कप मिंट लीव्स, 2 ग्रीन चिलीज, 1 टेबलस्पून लेमन जूस, 2 टेबलस्पून योगर्ट, नमक आप पिंच अमाउंट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही साथ अब आपने क्या करना है, तमाम तर इंग्रेडिएंट्स को ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेना है। आपकी फ्रेश टैंगी ग्रीन चटनी हो जाएगी तैयार। अब फाइनल फिनिशिंग की बात कर लेते हैं। अब आपने करना ये है कि चिकन को प्लेटर के सेंटर में रखें, साथ में वाइट राइस या नान जो आपको पसंद हो आप उसे रखें। लेमन के स्लाइसेस को कट कर लें, साथ ही साथ प्याज के रिंग्स को भी कट कर लें। इन्हें आप एक तरफ रखें, जो कि बहुत ही खूबसूरत दिलकश लगेगा दिखने में।
सो एक्स्ट्रा स्मोकी फ्लेवर के लिए आप इसमें चारकोल स्मोकिंग टेक्निक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं तो यही प्रेफर करूँगी कि आप सेंटर में चिकन सजी रखें, साइड पे आप चावल और एक तरफ आप रखते ग्रीन चटनी, तो आपकी ये मज़ेदार से डिलिशियस से टेम्पटिंग रेसिपी ना सिर्फ कंप्लीट दिखेगी बल्कि आपके तमाम तर खान चाहने वालों को भी अट्रैक्ट करेगी। सो वेल लिसनर्स, ये थी हमारी मज़ेदार से आज की रेसिपी जो कि है बाहर से गोल्डन अंदर से जूसी चिकन सजी साथ में अरोमेटिक राइस और चटपटी चटनी, परफेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर योर फैमिली गैदरिंग्स। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। वेल लिसनर्स, इस रेसिपी के हवाले से अगर आपका हो कोई भी सवाल तो आप हमसे कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर 01157100971 इस नंबर के थ्रू। सो उम्मीद तो यही है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। लास्ट में ट्राई कीजिएगा, ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक हमसे शेयर करना मत भूलिएगा क्योंकि आपके फीडबैक से हमें मोटिवेशन मिलती है और साथ ही साथ उम्मीद मिलती है कि हम हर आने वाले नए दिन में आपके लिए कुछ नया, कुछ अलग, कुछ मुनफरिद लेकर आएँ। जैसे के साथ ही आज के दीवा डायलॉग का ये सफर भी इख्तिताम पजीर होता है। आई होप आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। वेल, आज के टॉपिक जो के था हमारा फॉरगिवनेस एंड फॉरगेट द साइकोलॉजिकल आर्ट ऑफ लेटिंग गो। इस हवाले से भी अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के थ्रू, और रेसिपी को लास्ट में ट्राई करिएगा और ट्राई करने के बाद मुझे बताइएगा भी कि ये रेसिपी आपको किस तरह की और कैसी लगी। इसी के साथ ही मुझे अपनी होस्ट आरजे ज़ैनब फातिमा को दे इजाज़त। आपसे मुलाकात होती है कल एक नए दिन के साथ, एक नई उम्मीद के साथ और बहुत सी गॉसिप्स के साथ। सो तब तक माय डियर लिसनर्स एंड माय लवली डीवाज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और मेक श्योर करिएगा कि आप प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद भी आप अपने टाइम को कंज्यूम करें, अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाएं और अपने वक्त को अच्छे कामों में सर्व करें। सो एक बार फिर से आप सभी से रिपीट कर देती हूँ, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है radiofaza.co.uk। सो इस वेबसाइट के थ्रू आप ना सिर्फ हमें ट्यून कर सकते हैं बल्कि हर तरह की मालूमात हमारे रेडियो स्टेशन से जुड़ी हासिल कर सकते हैं। सो आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं और आप अपनी आवाज़ का जादू भी जगा सकते हैं।

साथ ही साथ ये कि मुझे दें इजाजत, आपसे मुलाकात होती है कल के केयर, अल्लाह हाफिज। सो जाते जाते आप सभी के लिए खूबसूरत ट्रैक प्ले कर देती हूँ, तो आप इस खूबसूरत ट्रैक को एंजॉय करें और मुझे अलविदा करें।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
3: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो। आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
4: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सेट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
3: सलासा ट्यूशन सेंटर?
4: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
3: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
4: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
3: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
5: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
6: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.

0: It's commercial time.
1: Rosehead Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosehead Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosehead Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosehead-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosehead Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW।
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Huzza 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप।
6: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
7: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
8: ओए खुशियां मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ।
9: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
8: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
9: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
8: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
9: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
8: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे, सोने ते स्वागा ये, क्यों हर तरह दा वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
9: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
8: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
9: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
8: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
10: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

0: It's commercial time.
1: इंग्लैंड में हम पानी का इस्तेमाल उतनी तेजी से कर रहे हैं जितनी तेजी से प्रकृति इसे दोबारा भर नहीं सकती। अगर कुछ नहीं बदला तो 2055 तक हमें हर दिन 5 बिलियन लीटर से भी अधिक पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है और वेल्स में अधिक गीली सर्दियां और अधिक सूखी गर्मियां पानी की सप्लाई पर दबाव डाल रही हैं। हम में से अधिकतर लोग सोचते हैं कि हम दिन में 30 लीटर पानी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हकीकत में ये 140 लीटर के करीब है। हम सब कुछ साधारण बदलाव करके पानी बचाने में मदद कर सकते हैं। शावर लेने में कम समय लगाएं, लीक करते नलों या टॉयलेट को ठीक करें, चलते हुए नल की बजाय बर्तन धोने के लिए वॉशिंग अप बाउल का इस्तेमाल करें और अपने डिशवॉशर या वॉशिंग मशीन पर एको मोड चुनिए। पानी अनमोल है, इसकी इज्जत के लिए हम सबको कम पानी का इस्तेमाल करना होगा। हर दिन पानी बचाने के आसान तरीकों के लिए लेट्स सेव वाटर सर्च करें या letssavewater.com पर जाएं।
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
4: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
6: Get ready to move.
7: It's all about the beats.
8: Wow, FM.
9: Only Tune Super Hit Channel.
10: Fizz on 97.1 FM.

The radio station for people who love music. 97.1 FM.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station. That plays
2: foot tapping music.
3: Hazar 97.1 FM.
4: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें राया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, राया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 नॉटिंघम या अभी रापता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार, सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.

0: हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention!
3: Property owners and letting agents, are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
4: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए हैं।
5: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सेट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
4: सलासा ट्यूशन सेंटर?
5: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटन डेल NG2 4LG में है।
4: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
5: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफस्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
4: फिर तो मैं आज ही उनसे रापता करता हूँ।
6: जी हाँ, आज ही रापता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
7: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
8: Get ready to move.
9: It's all about the beats. Wow,
10: you are listening 97.1 FM.

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। फजा 97.1 एफएम नॉटिंगम के लाइव स्टूडियो से मैं हूं आपके साथ, आपका मेजबान, आपका होस्ट एंड आपका दोस्त उस्मान खान। वेलकम, खुश आमदे जियान उस्ताद बिस्मिल्लाह पखैर राग ले अस्ता लविस्ता आवकाना दिल तराशे संगे जुड़े तगड़े। उम्मीद वासी के जो जहाँ जिस हाल में होगा, खुशपाश होकर अपनी जिंदगी को मजीद बेहतर से बेहतरीन बनाने की तगदों में मशगूल होगा, वो लोग नहीं है उनको हो जाना चाहिए, क्योंकि उस्मान खान आ चुके हैं आपके साथ आपके फेवरेट प्रोग्राम ड्राइव टाइम में। बेहद शुक्रिया आपका कि आप लोगों ने फजा 97.1 एफएम को ट्यून और डैब को ट्यून कर रखा है। अगर इसके अलावा आप हमारा साथ देना चाहते हैं, अगर रेडियो की ट्रांसमिशन आपसे ठीक नहीं पहुंच पा रही तो आप लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू मेरा साथ दे सकते हैं। उसके लिए आपने रेडियो फजा .co.uk सर्च करना है और फेसबुक पर यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ये तमाम तर चीज़ें, ये तमाम तर क्या होती हैं, ये तमाम तर प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिन पर हम लोग अवेलेबल हैं। आप हमें वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कॉमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा एप्लीकेशन है जनाब हमारी, जिस पर आप हमें ट्यून कर सकते हैं रेडियो फजा 97.1 एफएम के नाम से। इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा, प्ले स्टोर एप्पल स्टोर दोनों जगह पे अवेलेबल है। दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी जगह बआसानी आप हमें सुन सकते हैं, बशर्ते इंटरनेट आपके पास होना चाहिए। आइए प्रोग्राम की तरफ चलते हैं, प्रोग्राम का आगाज करते हैं और आपको बताते हैं कि प्रोग्राम में आप लोगों ने मेरा साथ किस तरह देना है। सबसे पहले तो आप सुन लीजिए, अगर आप ड्राइव करते हुए मुझे सुन रहे हैं तो आपको बहुत एहतियात की ज़रूरत है। बी सेफ, बी केयरफुल, एहतियात से ड्राइव कीजिएगा। मोबाइल फ़ोन से नज़र हटा के रखिएगा, क्योंकि थोड़ी सी स्क्रीन से नज़र हटी तो दुर्घटना घटी, इसलिए थोड़ा सा दूर रहिएगा और मोबाइल फ़ोन से दूर रहिएगा। डोंट यूज़ योर मोबाइल फ़ोन, बस स्क्रीन पर नज़र रखिएगा। और हमें आप अपनी गाड़ी में डैब पर ट्यून कर सकते हैं। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आपको एक अदद नंबर बताऊंगा, उस नंबर को सेव कीजिएगा, व्हाट्सएप पर जाइएगा और वहां पर जाकर अपना खूबसूरत सा पैगाम प्लस अपने इलाके का नाम या फिर कोई भी खूबसूरत सा पैगाम, यानी कि कोई पसंदीदा गज़ल हो जाए, एक नज़्म हो जाए, चंद अशआर, कोई कोटेशन, कोई बात, कोई सलाम, कोई दुआ या अपने उनके नाम कोई भी खूबसूरत सा पैगाम आप भेजना चाहें तो लिख कर भेज दीजिएगा। हवा के दोष पर लहराता गुनगुनाता सनसनाता हुआ आपके पैगाम जैसे मेरे काका कंप्यूटर की स्क्रीन पर आएगा, हजी सुनती हुई तमाम दर खूबसूरत सी समातों की नजर जरूर हो जाएगा। सो व्हाइल यू वेटिंग, मोबाइल फोन उठाइए, गाड़ी को थोड़ा सा साइड पे कीजिए, फिर मोबाइल फोन उठाइए और नंबर डायल कीजिए। द नंबर इज 0115710091। आई अगेन रिपीट, दिस नंबर इज वेरी स्लोली 0115710091। इस नंबर को सेव करने के बाद व्हाट्सएप पर जाकर आपने मुझे कोई भी पैगाम भेजना है या फिर चाहें तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, बट व्हाट्सएप पर। ये वो तमाम तरह रास्ते थे जो मैंने आपको बता दिए, जिनके थ्रू आपने मुझ तक पहुंचना है और अपने होने का एहसास मुझे दिलाना है, मुझे बताना है कि आप फला इब्ने फला फला जगह से मुझे सुन रहे हैं। यकीनन रोड्स पर रश का टाइम होगा और आपने भी पेशेंट बहुत एहतियात से ड्राइव करनी है, पेशेंट रखना है। और अगर घर की तरफ रवान दवा हैं तो चेहरे पे खूबसूरत सी रौनक लेकर आइएगा, एक प्यारी सी चमक और खूबसूरत सी स्माइल लेकर आइएगा, क्योंकि आपके घर वालों का आपका हंसता हुआ चेहरा ही अच्छा लगता है। हाँ, अगर आप अपनी सेकेंड शिफ्ट की तरफ जा रहे हैं, आप ट्रेन में हैं, बस में हैं या फिर किसी के बस में हैं तो फिर हाँ भी यही एक रास्ता है मुझ तक पहुँचने का। फिर सुनते हुए मेरा साथ निभाना आपके लिए बेहद ज़रूरी है और आप ज़रूर साथ निभाइएगा इसी नंबर पर। इसके अलावा आप तमाम तर लोगों को यह भी बताते चलें कि अगर आपसे हमारे किसी भी आरजे का कोई भी शो मिस हो जाता है तो यूट्यूब पे हमारे तमाम तर आरजे के रिकॉर्डेड शोज़ पड़े हैं, आप हमें यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहेगा, प्लस बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। मज़ीद फर्दर डिटेल के लिए आप हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं radiofaza.co.uk, वहाँ पर आपको तमाम तरह आरजेस की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कौन सा आरजे किस टाइम पे कौन सा प्रोग्राम करता है और किस जॉनर का प्रोग्राम करता है, ये तमाम तरह इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अगर आपको लगता है कि आप एक अच्छे बिजनेसमैन हैं और रेडियो फजा आपके बिजनेस को प्रमोट करने में आपका साथ दे
تو آپ اپنا خوبصورت سا ایک پیغام جو ہے ہماری مارکیٹنگ ٹیم کو بھیج سکتے ہیں, چاہے کسی بھی پلیٹ فارم سے. آپ بس ایک میسج چھوڑ دیجیے گا, ہماری ٹیم جو ہے وہ آپ سے خود رابطہ کر لے گی اور آپ کی بزنس کو چار چاند لگانے میں آپ کا ہم پورا پورا ساتھ دیں گے. پھر چاہے وہ آپ کا سوشل میڈیا ہو یا پھر آپ کا مکمل بزنس ہو, اب اس کی ذمہ داری آپ چھوڑ دیجیے. خیر جناب, اب بڑھتے ہیں پروگرام میں تھوڑی سی انٹرٹینمنٹ کی جانب. پروگرام میں شامل کر رہا ہوں ایک خوبصورت سی آواز, اور یہ آواز صرف ایک کی نہیں بلکہ دو اور تین سنگرز کی آواز مل کر آپ تک پہنچائی جا رہی ہے, جس میں سدھو موسے والا پہلے نمبر پہ, پھر آگے اپنی پیاری نصیب و لال, اور آخر پہ اپنے بوہے میاں دوست. ان تینوں کی آواز سے خوبصورت سے فریم میں آپ کی نظر کر رہا ہوں, امید ہے کہ آپ کو ضرور اچھی لگے گی. اس کو سنیے, انجوائے کیجیے, لوٹ کر آتے ہیں اس کے اس بعد. رہیے گا میرے ساتھ, ہم یہ ہوسٹ عثمان خان, اینڈ یو آر لسننگ فضا 97.1 FM اینڈ آلسو ڈیب, پروگرام کالڈ ڈرائیو ٹائم.

0: It's commercial time.
1: Rosyth Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosyth Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosyth Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosyth-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosyth Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त लेने।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136 138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station. That plays
2: foot tapping music.
3: Hazar 97.1 FM.
4: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: आप सुन रहे हैं वो स्टेशन जो सिर्फ गाने।
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
3: ओए खुशियां मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ।
4: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं। खैर तो है,
3: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
4: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
3: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
4: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
3: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे, सोने ते स्वागा ये, क्यों हर तरह दा वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
4: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
3: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
4: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
3: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
5: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115 671 3677.

0: वॉल्यूम बढ़ाइए क्योंकि अगला गाना है और भी जबरदस्त। ये है असली म्यूजिक का मजा सिर्फ और सिर्फ फजा 97.1 FM पर।
1: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
2: Radio Fazan 97.1 FM.

नजम से गजल बन गई, तू रोजी बदलती रही, असर से दखल बन गई, शिकायतें बढ़ती रही, मोहब्बत ये जंग बन गई, जिंदगी चलती रही, तुझको खबर ही नहीं, कोई डरी नहीं तो लड़ भी नहीं, बात आगे बढ़ती नहीं, तमाशे खत्म कर अभी, वो गलतियां गिनती गई, नफरतें बढ़ती गई, लोगों की सड़ती रही, शराब मुझे चढ़ती नहीं, मेरे आगे कभी किसी की भी चलती नहीं, शामें

0: Nonstop hits, nonstop energy. Radio Fuzza 97.1 FM.
1: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM.

0: गए मुझे जाली जमाना मैं नए जमाने से कटर कराची बेटा हवा आने दे हाई करे बात सीधा सौ आने
1: इट्स कमर्शियल टाइम।
2: इंग्लैंड में हम पानी का इस्तेमाल उतनी तेजी से कर रहे हैं जितनी तेजी से प्रकृति इसे दोबारा भर नहीं सकती। अगर कुछ नहीं बदला तो 2055 तक हमें हर दिन 5 बिलियन लीटर से भी अधिक पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है और वेल्स में अधिक गीली सर्दियां और अधिक सूखी गर्मियां पानी की सप्लाई पर दबाव डाल रही हैं। हम में से अधिकतर लोग सोचते हैं कि हम दिन में 30 लीटर पानी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हकीकत में ये 140 लीटर के करीब है। हम सब साधारण बदलाव करके पानी बचाने में मदद कर सकते हैं। शावर लेने में कम समय लगाएं, लीक करते नलों या टॉयलेट को ठीक करें, चलते हुए नल की बजाय बर्तन धोने के लिए वॉशिंग अप बाउल का इस्तेमाल करें और अपने डिशवॉशर या वॉशिंग मशीन पर एको मोड चुनिए। पानी अनमोल है, इसकी इज्जत के लिए हम सबको कम पानी का इस्तेमाल करना होगा। हर दिन पानी बचाने के आसान तरीकों के लिए लेट्स सेव वाटर सर्च करें या letssavewater.com पर जाएं।
3: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
4: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
5: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
4: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
5: मुगल बिल्डर्स?
4: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
6: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
4: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
6: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
4: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
7: 97.1 FM के साथ हर आवाज एक नई कहानी का आगाज।

ऑलराइट, वेलकम अगेन, वेलकम बैक जनाब, आज के लौट के वापस इस उम्मीद के साथ कि आप लोग मेरे साथ साथ हैं। मुझे कहते हैं उस्मान खान और आप सुन रहे हैं फजा 97.01 FM एंड ऐप के लाइव छोटे से प्रोग्राम ड्राइव टाइम। और इस ड्राइव टाइम में मेरा और आपका साथ जो है जनाब बस थोड़ा सा रह गया है, तो इस साथ को मजीद खूबसूरत बनाने के लिए आप लोगों का साथ जो है बेहद जरूरी है। आप तमाम दर समाधों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने फजा 97.01 FM डैप को ट्यून कर रखा है और इस खूबसूरत से प्रोग्राम में मेरा हिस्सा है। अगर आप ड्राइव करते हुए मुझे सुन रहे हैं तो जनाब आप ड्राइव पे ज़्यादा तवज्जो दीजिएगा, बाकी कान जो हैं वो प्रोग्राम की तरफ रखिएगा। और इसके अलावा अगर आप मुझे घर में कहीं बैठे सुन रहे हैं या कहीं भी आसपास मुझे सुन रहे हैं तो आप प्रोग्राम में मेरे साथ शामिल हो सकते हैं। 01157100971 पे आपने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। नूरजहां की आवाज़ को थोड़ा सा रिमिक्स किया गया है, आए हो अभी बैठे तो सही, मेरे तमाम तरह अंकल और आंटीज के लिए। उम्मीद है कि नूरजहां की ये खूबसूरत सी आवाज आपको जरूर अच्छी लगेगी इस टाइम पे। इसके पार करते हैं मुलाकात, रहिएगा मेरे साथ, आई एम योर होस्ट उस्मान खान।

ओके दोस्तों, वक्त आ गया है आज की इस खूबसूरत सी महफिल को आहिस्ता आहिस्ता समेटने का, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि आज के सफर में आपको कुछ ऐसी बातें जरूर मिली होंगी जो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आई हों, कुछ ऐसी बातें भी होंगी जिन्होंने आपको सोचने पर मजबूर तो किया होगा, और शायद कोई एक बात ऐसी भी हो जी जनाब, कुछ शायद एक बात ऐसी भी हो जाए जो आप अपने दिल में लेकर इस प्रोग्राम में रुखसत हो रहे हो। अब सोचने की बात यह है कि ऐसी कौन सी मेरी बात है जिसको आप दिल में रखकर मुझसे इजाजत चाह रहे हैं, बल्कि मैं आपसे इजाजत चाह रहा हूँ, आप तो हमारे साथ साथ रहेंगे। समय रेडियो का असल कमाल सिर्फ ये नहीं है कि एक आवाज आपके कानों तक पहुंचे, बल्कि असल कमाल तो ये है कि वो आवाज आपके दिल तक पहुंच जाए। कोई एक बात, कोई एक जुमला जो आपके दिल की दिन की थकन को जो है वो दूर कर दे, कोई बात आपको मायूसी से निकाल कर उम्मीद की तरफ ले जाए, और कोई एक ख्याल आपको जिंदगी के एक नए साबिये से मुतारिफ करवाए। अच्छा, मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में छोटी छोटी खुशियों की अहमियत बहुत ज़्यादा है। अब अक्सर किसी बड़ी कामयाबी के इंतज़ार में रहते हैं, सोचते हैं कि जब अच्छी नौकरी मिलेगी तो खुश होंगे, जब अपना घर बन जाएगा तो सुकून मिलेगा, जब सारे मसाइल ख़त्म हो जाएंगे तो ज़िंदगी को मिल के इंजॉय करेंगे। लेकिन आपको पता है हकीकत क्या है जनाब? हकीकत यह है कि ज़िंदगी हमारे इंतज़ार में कभी नहीं रुकती। दिन गुजरते हैं, मौसम बदलते हैं, लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं और आते हैं फिर जाते हैं, और हम कल की फिक्र में आज के कई खूबसूरत लम्हे जो है वो गवा देते हैं। तो इसलिए मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कभी फुर्सत मिले तो अपने इर्द गिर्द देखिएगा, घर में वाले दैन बैठे हों तो उनके पास चंद मिनट बैठ जाइएगा, बच्चे आपसे बात करना चाहते हों तो अपना मोबाइल फोन एक साइड पे रख दीजिएगा और तवज्जो से उनकी बात सुन लीजिएगा। किसी पुराने दोस्त का ख्याल आए तो उसे ज़रूर याद कीजिएगा, ना सिर्फ याद कीजिएगा बल्कि एक फ़ोन ही कर लीजिएगा, और अगर कोई आपके लिए कुछ अच्छा करे तो उसे ये बताना कभी मत भूलिएगा कि उसके इस अमल से आपको कितनी खुशी हुई है। यही सबसे बड़ा मसला है कि आज हमें अगर किसी से कोई खुशी मिलती भी है तो हम उसका बर्मला इजहार नहीं कर पाते, हम उसे बता नहीं पाते कि हमें उसके इस अमल से कितनी खुशी मिली। लेकिन यकीन कीजिए कि हर खूबसूरत लम्हे के लिए बड़ी रकम, बड़ी तकरीब या किसी ख़ास मौके की ज़रूरत नहीं होती। कभी एक कप चाय, कभी अपने कभी भी एक कप चाय, कभी किसी अपने की हंसी, कभी घर वापसी पर मिलने का एक प्यारा सा इस्तकबाल, और कभी किसी परेशान इंसान के लिए कहे गए दो खूबसूरत से अल्फाज पूरे दिन का रंग बदल सकते हैं। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि दूसरों की ज़िंदगी को देखकर अपनी ज़िंदगी के फैसले कभी मत कीजिएगा। सोशल मीडिया पर किसी की कामयाबी देखकर अपने आप को नाकाम मत समझिएगा। किसी का अच्छा घर देखते हैं, अच्छी गाड़ी देखते हैं, खूबसूरत सफ़र देखते हैं या खुशियों भरी तस्वीरें देखकर ये फैसला कभी मत कीजिएगा कि शायद सिर्फ आप ही की मुश्किलात हैं, शायद आप ही मुश्किलात में घिरे हुए हैं। देखिए, हर इंसान की ज़िंदगी ना एक कहानी की तरह होती है। किसी की कामयाबी के पीछे कई सालों की मेहनत होती है, किसी की मुस्कुराहट के पीछे पता नहीं कैसे कैसे दुख होते हैं जिनका अंदाज़ा शायद दूसरों को कभी नहीं होता, और किसी की खामोशी के पीछे ऐसी एक जंग चल रही होती है जिसके बारे में दुनिया कुछ नहीं जानती। इसलिए अपनी रफ्तार से चलिए, कोई जल्दी नहीं है, आराम सुकून से जो आपके एक रफ्तार का मायार आपने सेट कर रखे बस उस रफ्तार पे चलिए, अपने मकासद पर तवज्जो दीजिए और अपनी गलतियों से सीखिए और अपनी छोटी छोटी कामयाबियों की कदर कीजिएगा। अगर आज आप वहाँ नहीं पहुँचे जहाँ पहुँचने का ख्वाब देखा था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी वहाँ पहुँच ही नहीं सकते। देखिए, बाज़ूकात ना मंजिल तक पहुँचने से पहले इंसान को खुद को समझना, अपने हौसले को मजबूत करना और अपनी तरजीहात को दुरुस्त करना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, ज़िंदगी में मुश्किल वक्त आए तो ये ज़रूरी नहीं कि हर बात का जवाब उसी लम्हे मिल जाए। कुछ सवालों के जवाब अब वक्त देता है, कुछ उलझने तजर्बा सुलझाती हैं, और कुछ रास्ते तब खुलते हैं जब हम हिम्मत हारने के बजाय एक कदम और आगे बढ़ाते हैं।

सुखैर मेरे प्यारे से दोस्तों, मैं आपसे यही बात कर रहा था कि एक कदम और आगे बढ़ाना है कब जब कभी आप हिम्मत हारने लग जाएं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होगा कि आप हर बोझ अकेले उठाते रहें। अगर दिल परेशान है तो किसी काबिल एतमाद इंसान से बात कर लीजिएगा। अगर थकन महसूस हो रही है तो थोड़ा सा आराम कर लीजिएगा। अगर गलती हुई है तो उसे मान लीजिएगा और उसकी दुरुस्तगी कीजिएगा। मजबूत होने का मतलब ये नहीं कि इंसान कभी टूटते ही नहीं, बल्कि मजबूती ये भी है कि इंसान अपनी कैफियत को समझे, मदद मांगने में शर्म महसूस ना करे और दूसरे लोगों के सामने कभी भी खुद को कमजोर साबित मत करे, बल्कि दोबारा संभलने की कोशिश हमेशा जारी रखे। और कभी ऐसा हो कि आप किसी ऐसे शख्स से मिले जो बज़ाहिर खामोश है, जो पहले की तरह बातें नहीं करता, जो जब आपकी महफिल में बैठता है मौजूद तो होता है मगर दिल दिमाग उसका कहीं और खोया होता है, तो उसके बारे में फौरन कोई भी राय कायम मत कीजिएगा। कभी कभी एक सादा सा सवाल, आप खैरियत से हैं, किसी को ये एहसास दिला देता है कि दुनिया में अभी भी कोई ऐसा है जिसे उसकी परवाह है। हम सबको ज़िंदगी में ऐसे लोगों की ज़रूरत तो होती है जिनके सामने हमें हर वक्त मजबूत बनने का ड्रामा करना पड़ता है, ऐसे लोग जिनसे बात करते हुए अल्फाज सोचने ना पड़े, जिनके सामने खामोशी भी अजीब सी महसूस ना हो, जिन्हें हमारी खुशी के साथ हमारी परेशानी का भी एहसास हो। अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग मौजूद हैं तो उनकी कदर कीजिएगा। ताल्लुकात सिर्फ उस वक्त याद करने के लिए नहीं होते जब हमें किसी काम की ज़रूरत हो, बल्कि रिश्तों को वक्त चाहिए होता है, तवज्जो चाहिए होती है, हुज़ूर इज़्ज़त चाहिए होती है और सबसे बढ़कर खलूस चाहिए होता है। अपने घर वालों को वक्त दीजिएगा, अपने दोस्तों की बातें सुनिए, इख्तलाफ़ हो तो इज़्ज़त से तहजीब के साथ कीजिए और किसी की इज्जत को अपनी अना की खातिर कभी नुकसान ना पहुंचाइएगा, क्योंकि बाज़ूकात बहस में जीतने वाला इंसान भी एक कीमती रिश्ता खो जाता है और बाज़ूकात एक कदम पीछे हट जाना कमज़ोरी नहीं बल्कि समझदारी की निशानी होती है। चलिए अब ज़रा बात करते हैं इस ज़िंदगी की जिसमें हम सब रोज़ाना मसरूफ़ तो रहते हैं, सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, कारोबार संभालते हैं, घर के अखराजात पूरे करते हैं, बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं, अपने ख्वाबों के लिए कोशिश करते हैं और फिर दिन के अख्ताम पर थके हुए घर वापस आ जाते हैं। इस सारे सफर में एक बात कभी मत भूलिएगा कि आपकी मेहनत अहम है लेकिन आपकी सेहत भी अहम है। आपके ख्वाब ज़रूरी हैं लेकिन आपका सुकून भी तो ज़रूरी है ना। अपने ख़ानदान की जिम्मेदारियां निभाना काबिले कद्र है लेकिन ख़ुद को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर देना कोई कामयाबी नहीं है। अपने दिन में चंद मिनट अपने लिए भी ज़रूर निकालिए। कभी खामोशी से बैठकर सोचिए कि आप किस सिम जा रहे हैं, क्या चीज़ आपको खुशी देती है, किन आदात में तब्दीली लाने की ज़रूरत है हुज़ूर, और कौन सी मुलक मामलात ऐसे हैं जिन्हें बिला वजह अपने दिल पर सवाल कर रखा है आपने। हर मसले का एक दिन हल निकल ही जाता है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर मसला जो है वो लॉन्ग टर्म चले, कभी कभार दिनों में और कभी कभार महीनों पर भी बात चली जाती है। हर इंसान को खुश रखना आपकी जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं है और हर बात का जवाब देना भी ज़रूरी नहीं है। कभी कभी अपनी तवानाई को महफूज रखना आपके लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है। गैर ज़रूरी बहस से दूर रखिए और अपने असल मकासद पर तवज्जो देना ही आपके लिए बेहतरीन फैसला है। खैर जना, बातें लंबी होती जा रही हैं और वक्त जो है वो अब मजीद हमें इजाजत नहीं दे रहा। सो आपके अपने मेजबान, आपके दोस्त आरजे उस्मान खान आपसे इजाजत चाहेंगे। उम्मीद है कि आज के सफर में मैंने आपका साथ अच्छे तरीके से निभाया, आपसे बातें की, कुछ ख्यालात आपके साथ बांटे और इस उम्मीद के साथ माइक से रुखसत हो रहा हूँ कि हमारी ये आवाज आपके दिन का एक खूबसूरत हिस्सा बनी होगी। वेल जनाब, आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM का प्रोग्राम ड्राइव टाइम। सो याद रखिए, जिंदगी में रफ्तार जरूरी हो सकती है लेकिन हर सफर में मंजिल से ज्यादा अहम ये भी है कि हम सफर के दौरान अपने साथ चलने वालों का ख्याल रखते हैं या नहीं रखते। इसलिए आगे बढ़िए, ख्वाब देखिए, मेहनत कीजिए, मुस्कुराइए, अपनों की कदर कीजिए और अपनी जिंदगी के हर दिन को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। सोवेल, मैं हूँ आपका अपना मेजबान आरजे उस्मान खान, आपका अपना, आपका प्यारा, आपका लाडला, आपका चहेता। इजाजत चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और जहाँ भी रहिए मोहब्बत इज्जत अच्छे अखलाक को अपने साथ रखिए। इस दुआ, इस मोहब्बत और इस उम्मीद के साथ मुझे दीजिए इजाजत। 97.1 FM हमेशा आपके साथ रहेगा। और हाँ, एक आखिरी बात, अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मेज़बान उस्मान खान को दुआओं में याद रखिएगा, वहां से प्यार ले लीजिएगा जहां पर प्यार बट रहे और बाखुदा
वहां पर प्यार दे दीजिएगा जहां पर प्यार की जरूरत है। जिंदगी और सांसों में वफा की धुकल, सेम टाइम सेम प्लेटफॉर्म पे आपसे दोबारा से मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुश आबाद हंसते और मुस्कुराते रहिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए आपका मेरा और सबका अल्लाह निगेबान।

0: in your face, all over the place.
1: We're online 24/7. 24/7.
0: You're listening to the hottest internet station.
2: 97.1 FM.
3: This is
4: Fazana 97.1 FM.
3: Ruko mat, bajao.
5: Theriye zara. Ye commercial to sun le.
6: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए। गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी। स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड एंकिन रोड नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 0759315069। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
7: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
8: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
7: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
8: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
7: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
8: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
7: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
9: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
6: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
10: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
11: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.

उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मजे में होंगे और अपनी लाइफ को भरपूर तरीके से एंजॉय भी कर रहे होंगे। बिल्कुल लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। बहुत सारी रुकावटें आती हैं, बहुत से लोग आपकी लाइफ में रुकावटें पैदा करते हैं और नसीब भी कुछ अपना अमल दखल ज़रूर दिखाते हैं, लेकिन उसका हरगिज मतलब ये नहीं कि हम हिम्मत हार जाएं। ऐसी जिंदगी की आंखों में आंखें डाल के कहना चाहिए, मेरा खुदा है ना। वो कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं यार उसका खुदा है। रेडियो फजा 97.1 FM और डैब आपके लिए 24 घंटे सातों दिन कम्युनिटी के लिए हाजिर हैं। 24 घंटे आपके लिए प्रोग्राम्स होते हैं, सुबह से लेकर रात तक हमारे प्रोग्राम्स होते हैं और उसके अलावा प्लेलिस्ट में आपके लिए लेटेस्ट म्यूजिक भी होता है, न्यूज़ अपडेट्स भी होती हैं और बहुत कुछ होता है। आप हमारी वेबसाइट को भी फॉलो कर सकते हैं, radiofaza.co.uk। हमारी नई वेबसाइट बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है और वो बिल्कुल मॉडर्न वेबसाइट है जिसमें मज़ीद अपडेट्स हैं। और हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए लाइव हमें आप वहाँ से भी सुन सकते हैं और उसके अलावा हमारे जितने भी सोशल मीडिया के पेजेस हैं आप उनको भी ज़रूर फॉलो कीजिए, जिसमें है फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब। बल्कि यूट्यूब पे एक नई चीज़ है, हमारे प्रोग्राम्स की पॉडकास्ट वहाँ पर लग रही है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप जाइए रेडियो फजा ऑफिशियल पे और वहाँ पर जाके आप हमारे प्रोग्राम्स को सुन सकते हैं। हर हफ्ते की तरह हम आज भी आपके लिए लेकर आए हैं एक टॉपिक, एक डिस्कशन कहा जा सकता है, बल्कि हम इसे टॉपिक नहीं कहते, डिस्कशन कहते हैं। और हो सकता है कि आप सबका ये पसंदीदा अल्फाज हो, लव्स हो। आज का मौजू है एक ऐसा लव्स जिसे हम दूसरों के लिए तो बहुत आसानी से इस्तेमाल करते हैं लेकिन अपने लिए सुनना पसंद नहीं करते। जी हाँ, हिपोक्रेसी, मुनाफकत। कभी सोचा है कि मुनाफकत आखिर है क्या? क्या मुनाफकत सिर्फ झूठ बोलने का नाम है? क्या मुनाफकत सिर्फ किसी के सामने अच्छा और पीछे बुरा होने का नाम है? या फिर मुनाफकत हमारी जिंदगी में इस कदर शामिल हो चुकी है कि हमें अपने दोहरे मेयार भी मामूल का हिस्सा महसूस होते हैं। हम सच्चाई की तारीफ करते हैं लेकिन सच सुनने का हौसला नहीं रखते। हम इंसाफ का मुतावला करते हैं लेकिन जब फैसला अपने खिलाफ हो तो इंसाफ भी ना इंसाफी लगने लगता है। हम दूसरे के बच्चों को तहजीब सिखाते हैं लेकिन अपने बच्चों की बदतमीजी को एतमाद का नाम देते हैं। हम मुआशरे में तब्दीली चाहते हैं लेकिन अपनी आदतें बदलने के लिए तैयार नहीं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम मुनाफकत के खिलाफ भी अक्सर मुनाफिकाना रवैया इख्तियार करते हैं। तो आज का हमारा जो हमारी डिस्कशन है वो है मुनाफकत पे, हिपोक्रेसी पे। अगर आप हिस्सा लेना चाहें और हमें कॉल करना चाहें तो हमारा नंबर है डायरेक्टली 0115-7100-971। इस नंबर पे आप हमें कॉल कीजिए या हमें व्हाट्सएप मैसेजेस कीजिए, शामिल हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको सुनाते हैं खूबसूरत सा ट्रैक और उम्मीद है कि आप इस ट्रैक को पसंद करेंगे। अहदे वफा एक पाकिस्तान का ड्रामा है, राहत फतेह अली खान साहब की आवाज में। सोच

जहाँ कहते हैं कि वो सब कुछ हमने अहद वफा के नाम किया। इंतहाई खूबसूरत सा ट्रैक आप सबके लिए प्ले किया था। जितने भी हमारे लिसनर हैं, जिन लोगों ने भी रेडियो जोन किए, उन सबको बता दे चलें, आप सुन रहे हैं रेडियो फजा 97.1 FM और डैब। जिन लोगों के पास गाड़ियों में डैब नहीं है वो तो यकीनन एफएम सुनते हैं, और बल्कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी गाड़ियों में डैब है और उन्हें पता नहीं है कि रेडियो फजा डैब पे है, तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू डैब एज वेल, वे यू कैन हेयर अ डिजिटल क्वालिटी। आज की हमारी डिस्कशन है मुनाफकत, और अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में, आपकी इस छोटी सी दुनिया में कोई ऐसा शख्स है जो कि मुनाफिक है, तो आपकी नजर में उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, आप कैसे उसकी वजाहत करेंगे कि ये शख्स मुनाफिक है, इसने मेरे साथ ये किया, मुझे लगता है कि ये दोगला है। आज आप सबसे एक सवाल करना चाहूंगा, और बहुत ही गहरा सवाल है, गौर से सुनिएगा। क्या मुनाफकत मुआशरे की बीमारी है या इंसानी फितरत की कमजोरी? रिपीट किए देता हूं, क्या मुनाफकत मुआशरे की बीमारी है या इंसानी फितरत की कमजोरी? और अगर हम सब कभी ना कभी अपने असूलों से समझौता करते हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि हम सब मुनाफिक हैं? यही सवाल आज के दो घंटों में हमारे साथ चलेगा। क्या आपने कभी ऐसे शख्स को देखा है जो दूसरों को नसीहत तो करता है लेकिन खुद उस नसीहत पर अमल नहीं करता? और क्या कभी आपने खुद को भी ऐसी सूरत हाल में पाया है? हमें व्हाट्सएप कीजिए 01157100971 पे। वैसे क्या इंसान फितरी तौर पे मुनाफिक है? फलसफे की दुनिया में एक दिलचस्प सवाल हमेशा से मौजूद रहा है, क्या इंसान वो है जो सोचता है, वो जो कहता है, या वो जो करता है? अगर ये तीनों चेहरे मुख्तलिफ हों तो इंसान की असल पहचान क्या है? खुद एहतसाबी और अपने अकायद पर सवाल उठाने की अहमियत क्या है? सुकरात आप जानते हैं कि बहुत बड़े फिलोसोफर थे यूनान के। इस फिक्र की रोशनी में हमें ये पूछना चाहिए कि हम दूसरों के तजादात को देखने के लिए मगर अपनी तजादात क्यों नहीं देखते? फर्ज कीजिए एक शख्स ईमानदारी पर लंबी तकरीर करता है लेकिन अपने फायदे के लिए झूठ बोलता है, क्या इसकी तकरीर गलत थी? जरूरी तो नहीं, लेकिन क्या इसके अमल ने उसकी बात के इख्तलाफ हैसियत को कमजोर किया? यकीनन। यहां एक अहम फर्क समझना जरूरी है, हर वो इंसान जो अपने असूलों पर पुरमुकम्मल अमल नहीं कर पाता लाजमन मुनाफिक नहीं होता। बाज़ुकात इंसान कमजोर पड़ जाता है, गलती करता है, पछताता है और खुद को दुरुस्त करने की कोशिश भी करता है, लेकिन जब इंसान अपने लिए अलग और दूसरों के लिए अलग मयार बना लेता है, अपनी गलती को जायज और दूसरों की गलतियों को नाकाबले माफी करार देता है, तो मुनाफकत का सवाल ज्यादा मजबूत हो जाता है। वैसे एक बड़ी पते की बात यह है कि एक डिस्कशन का हिस्सा है कि एक इंसान के तीन चेहरे होते हैं, ये तो हम सब जानते हैं। वो चेहरा जो दुनिया को दिखाता है, वो चेहरा जो अपने करीबी लोगों को दिखाता है, और वो चेहरा जो सिर्फ आईने में देखता है। क्या ये तीनों चेहरे एक जैसे होते हैं, और क्या मुख्तलिफ हालात में मुख्तलिफ रवैया इख्तियार करना मुनाफकत है या फिर मुआशरती समझदारी? एक बड़ी मजे की डिबेट है, इस पे भी कंटिन्यू करेंगे अपनी बात को, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं एक प्यारा सा ट्रैक, सुनिएगा वो हो तुम, फ्रॉम द ड्रामा बिरयानी ओरिजिनल ओएसटी।

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं फजा 97.1 एफएम लाइव ब्रॉडकास्ट फ्रॉम नॉटिंघम। ना सिर्फ बल्कि एफएम पे आप हमें डैप पे भी सुन सकते हैं, ना सिर्फ डैप पे बल्कि आप हमें ऐप पे भी सुन सकते हैं। हमारी खुद की एक ऐप है रेडियो फजा के नाम से, ना फिर आप हमें सिर्फ ऐप पे बल्कि हमारी वेबसाइट पे भी सुन सकते हैं विच इज radiofaza.co.uk। और उसके अलावा हम तक पहुंचने के बहुत से रास्ते हैं। आप हमारे स्टूडियो का भी विजिट करना चाहें, हमसे बात करना चाहें, इस कम्युनिटी रेडियो का हिस्सा बनना चाहें, अपनी कंट्रीब्यूशन देना चाहें, तो हम यहां आपके लिए हाजिर हैं। आप रेडियो प्रेजेंटर बनना चाहें, इस हॉट सीट पे बैठना चाहें, या फिर अगर आप एडवर्टाइजमेंट करवाना चाहें अपने बिजनेस की, तो हम हाजिर हैं। क्योंकि दिस इज द ओनली साउथ एशियन कम्युनिटी रेडियो बेस्ड इन होल नॉटिंघमशायर, जो कि वी रीचिंग टू ऑल साउथ एशियन कम्युनिटी विच इज मोर देन 100,000। ये जरूरी नहीं कि आपके बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, ये है कि आप बदले में कम्युनिटी को देते क्या है। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन यू कैन टेक। दिस इज मी जकी खान, आप सुन रहे हैं मॉडर्न सोसाइटी अनफिल्टर्ड, जिसमें हम अपनी सोसाइटी की बात करते हैं, इसमें कोई फिल्टर नहीं होता। और आज की हमारी डिस्कशन है मुनाफकत, हिपोक्रेसी। ये बहुत ही डीप टॉपिक है और इस पे बहुत सी बातें की जा सकती हैं और हम कर भी रहे हैं। हमें व्हाट्सएप पे आप मैसेज करना चाहें तो हमारा नंबर है 01157100971। और उसके अलावा आप हमें अगर ऑफ एयर कॉल करना चाहें तो हमारा नंबर है 01157117100970। ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर भी है, इस पे आप मैसेजेस कर सकते हैं। हमें कुछ पैगाम आए हैं, उनको हम शाम में प्रोग्राम करेंगे। चूंकि आज की जो डिस्कशन है उसको हम ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं, तो हमें कुछ मैसेजेस आए हुए हैं। अब शायस्ता कहती हैं कि मुनाफकत जैसी खतरनाक चीज़ कोई नहीं। मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरी एक सहेली थी जो कि बहुत मुनाफिक थी। उसने हमें, हमारी सब सहेलियों को आपस में लड़वा दिया और सबके साथ बहुत मीठी बनी हुई है। और साथ कहती हैं कि मुनाफिक लोगों को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। दे आर द मोस्ट डिफिकल्ट पर्सनैलिटीज के आप उनको ना जज कर सकते हैं, ना उन्हें आप समझ सकते हैं, क्योंकि आपको कब कहां कहां से नुकसान पहुंचाएंगे आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। अगर कोई दुश्मन बन जाए तो ज़्यादा सेफ है, दोस्त रह के कोई मुनाफिक हो तो उससे ज़्यादा नुकसान आपको कोई भी नहीं पहुंचा सकता। जी हाँ शायस्ता, बिल्कुल ऐसा ही है। कहते हैं ना कि जो आपके राजदान होते हैं, जो आपके करीबी दोस्त होते हैं, आज के दौर में क्या बल्कि पिछले जितने भी दौर गुजरे हैं। अभी मेरी किसी से इस बारे में बात चल रही थी तो मैंने उनसे पूछा कि बताएं कि आपकी नज़र में मुनाफकत क्या है। क्योंकि कोई भी प्रोग्राम करने से पहले इस पर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशंस होती हैं कम्युनिटी के साथ। तो उन्होंने कहा जी मुनाफकत तो यकीनन वही लोग होते हैं जो दो चेहरे वाले होते हैं, लेकिन इंतहाई ख़तरनाक लोग भी होते हैं। और जब मैंने उनसे पूछा कि अब 90s के दौर में और आज के दौर में आप फ़र्क कैसे करोगे, क्या मुनाफकत की रेशियो बढ़ गई है, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि देखें जी 90s के दौर में सोशल मीडिया नहीं था और तब हम इतने ज़्यादा, हम बड़े थे भी नहीं कि हम प्रैक्टिकल लाइफ में होते और लोगों से ज़्यादा मेलजोल हमारी होती। देखा जाए अगर हम 10 लोगों को जानते थे उसमें से अगर 5 लोग मुनाफिक थे, तो आज अगर हम 100 लोगों को जानते हैं तो उसमें से 50 मुनाफिक हैं। तो रेशो तो वही के वही है। इंसान कभी भी नहीं बदलता, इंसानियत बदल जाती है। तो शायस्ता के साथ हमें मैसेज आया हुआ इकराम का। इकराम कैसे हैं आप, ठीक हैं? इकराम ने एक गाने की रिक्वेस्ट की है। इकराम आपके लिए नेक्स्ट गाना जो है आपके लिए प्ले कर देंगे, एंड होपफुली यू आर एंजॉइंग द शो। जरूरी नहीं होता हम जब कहते हैं कि ये एक फर्जी सी बात है कि आप शो को एंजॉय कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये सवाल एक्चुअली बनता ही नहीं है कि आप शो में इंटरेस्ट ले रहे हैं नहीं ले रहे, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। क्या कहते हैं आप? आपको एक मिसाल देता हूँ किसी एक मुनाफिक शख्स की, जिसको हम मुनाफिक समझते हैं। कि अगर कोई शख्स अपने दफ्तर में बहुत शाइस्ता है, यानी कि बहुत नाइस है, काइंड है, लेकिन घर में वही शख्स का मिजाज, उसका जो नेचर है,
वो बिल्कुल डिफरेंट है। मैं पर्सनल इमोशंस और प्रोफेशनल बिहेवियर हर जगह एक जैसा बर्ताव मुमकिन नहीं हो सकता, बिल्कुल ऑपोजिट पर्सपेक्टिव है, फर्क होता है। लेकिन अगर एहतराम एक असूल है तो क्या घर वालों को इस असूल से महरूम रखा जा सकता है? देन अगेन ये एक बड़ा ही गहरा सवाल है कि बातें शायद हमारी समझ में नहीं आती कि हर इंसान एक दोस्तों के साथ डिफरेंट है, अपने माँ बाप के साथ डिफरेंट है, अपने बच्चों के साथ डिफरेंट है, अपनी बीवी के साथ डिफरेंट है, अपने हस्बैंड के साथ कोई डिफरेंट है, और जो लोग आम लोग आपको मिलते हैं आप उनके साथ डिफरेंट हैं। तो क्या इससे ये साबित होता है कि वो मुनाफिक हैं? नहीं, हरगिज नहीं, क्योंकि ये उनका नेचर का हिस्सा है कि वो अपना हक अदा करते हैं, हर रिश्ते को सही से निभाते हैं। तो अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा मुनाफिक है जिसे आप कोट करना चाहें तो आप हमारे शो को ज्वाइन कीजिए, कंट्रीब्यूट कीजिए और अपने मैसेजेस हमें भिजवाइए। अब अगर हिपोक्रेसी की बात की जाए तो हिपोक्रेसीज फैमिलीज में भी होती हैं और रिश्तों में भी होती हैं। आप पूछेंगे वो कैसे? हमारे घरों के ना दोहरे मेयार होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारा का सारा मुआशरा ऐसा है, लेकिन ऐसा अगर कोई करता है तो शायद गलत है। हमारा मुआशरा खानदान को बहुत अहमियत देता है, लेकिन बाज़ औक़ात सबसे ज्यादा तज़ादात हमें अपने घरों में ही मिलते हैं, यानी इख्तलाफात जो होते हैं। एक बेटे को आजादी दी जाती है लेकिन बेटी से हम हर कदम पर सवाल करते हैं और जवाब तलबी की जाती है। एक शख्स अपने वालदैन की खिदमत को अजीम फर्ज करार देता है, लेकिन अपनी शरीक हयात के वालदैन के लिए वही एहतराम जरूरी नहीं समझता। यानी कि आपने अपने माँ बाप की तो इज्जत करनी है, लेकिन लड़की के माँ बाप की आपने इज्जत नहीं करनी। इसी तरह लड़की अपने माँ बाप की इज्जत करेगी लेकिन आपके माँ बाप की इज्जत नहीं करेगी। हम जानते हैं कि हमारे बच्चे हमसे सच बोलें, हम ये चाहते हैं, लेकिन जब कोई मुश्किल सवाल पूछें तो हम उन्हें खामोश कर देते हैं। हम रिश्तों में वफादारी चाहते हैं मगर अपने रवैयों के लिए हमेशा कोई ना कोई जवाब तलाश करते हैं। अच्छा, चलें तसव्वुर करते हैं कि दो भाई हैं। एक भाई अपने बच्चों की कामयाबी पर खुश होता है और दूसरे के बच्चों की कामयाबी को किस्मत या सिफारिश का नतीजा करार देता है। अपनी बेटी के फैसले को एतमाद कहता है मगर दूसरे की बेटी को उसी फैसले को बेराबरी। यहां मसला सिर्फ हसद नहीं बल्कि वो मयार है जो रिश्ता बदलते ही बदल जाता है। अब मेरा आप सबसे सवाल ये है, क्या हमारे मुआशरे में बेटों और बेटियों के लिए अलग इखलाकी असूल हैं? क्या वालदैन अपने बच्चों के लिए कुछ और दूसरों के बच्चों के लिए कुछ और सोचना, क्या ये मुनाफ़कत है? क्या रिश्ते बचाने के लिए कभी सच छुपाना जायज़ है? क्या हर दोहरा मेयार जानबूझकर इख्तियार किया जाता है? हम ना अक्सर रिश्तों को मोहब्बत के तराजू में नहीं अपने फायदे के तराजू में तोलते हैं। मुनाफ़कत ये भी है ना कि जहां आपको मुफाद दिखा आप वहां पर चल पड़े। और लेकिन ऐसा भी होता है कि आपकी जिंदगी में ऐसा कोई शख्स अगर आ जाए कि जो आप जानते हैं कि आपके लिए नुकसानदेह है, आपको नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन फिर भी हम उसके साथ ना बिल्कुल मीठे से बन के रहेंगे, नहीं यार हमने बिगाड़नी नहीं है किसी के साथ, लेकिन दिल में वो रखना जरूर है, ये मुनाफ़कत है। इससे बेहतर ये ना हो कि आप उस शख्स को बिल्कुल ही अपनी जिंदगी से निकाल फेंकें और उसे बिल्कुल ही अरेज कर दें कि ऐसा कोई शख्स आपकी जिंदगी में कभी था ही नहीं। इकराम साहब, आपका इंतजार खत्म हुआ, आपकी फरमाइश जाने बहारा। ये पाकिस्तानी और तुर्किश म्यूजिक का एक रिमिक्स है, उम्मीद है कि हमारे तमाम लिसनर्स को पसंद आएगा।

चलें जी, भी वो चला वक्त जाता है डबल डोज ऑफ द डे पे। हमें कोई ओशान है, उन्होंने एक मैसेज किया है, वो एक गाना सुनना चाहते हैं हमजा मलिक और जैन जुहेब की आवाज में, अल्फाज। मैंने शायद ये गाना सुना होगा पहले, लेकिन हम सब मिलकर सुनते हैं और देखते हैं कि ये ट्रैक कैसा है। उम्मीद है कि आपको भी पसंद आएगा। लेट्स लिसन टू दिस ट्रैक एंड वी विल कम बैक टू आवर शो देन।

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं फजा 97.1 एफएम लाइव ब्रॉडकास्ट फ्रॉम नॉटिंघम। जी हाँ, मैं हूँ ज़िकी खान, जिसे आप सुनते हैं हर बुध की शाम 6 से लेकर 8 बजे तक। हमारी टाइमिंग चेंज हो चुकी है, अगर आप 7 से 9 सुनने के आदि हैं तो अभी आदि हो जाइए, 6 से 8 आपका और हमारा साथ रहेगा। जैसे आप सब जानते हैं कि हम आपके लिए लेकर आते हैं हर हफ्ते एक नई डिस्कशन, तो आज भी लेकर आए हैं एक नई डिस्कशन, बड़ी कमाल की है और हकीकत से बहुत करीब है, शायद हमारे अंदर है, हमारे नेचर का हिस्सा है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते, उसे महसूस नहीं कर पाते। वो है मुनाफ़िकत। क्या हम मुनाफिक हैं? क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमारे मुआशरे के बारे जब हम करेंगे तो शायद किसी को बुरी लग जाएगी, और कोई जैसे मानता नहीं है कि मैं चोर हूं, इसी तरह से कोई मुनाफिक मानेगा कि मैं मुनाफिक हूं। और अगर कोई ऐसा है भी तो उसको अगर सुधरने का मौका मिले और अपने आप पे जरा गौर फरमाए तो यकीनन उसके नेचर में, और उसकी नेचर तो खैर बदलता नहीं, इंसान का फितरत कभी नहीं बदलती, कहते हैं कि आदतें बदल जाती हैं, और इस माशरे में रह रहे के वो इस तरह के हो जाते हैं कि उनकी आदत बन जाती है। अगर तो आदत बन चुकी है तो उसे बदला जा सकता है। आदत बदलने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ थोड़ा सा गौर फिक्र करना है अपनी ज़ात पे, और ये जानना हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो अक्सर मैं बात कहता हूँ कि हर इंसान के दुनिया में आने का कोई ना कोई मकसद ज़रूर है। अभी आपने सोचा है अकेले बैठ कर मी टाइम में कि हमारा इस दुनिया में आने का मकसद क्या है? हम तो अपने मकसद पूरे करने के लिए मुनाफिक बन जाते हैं, अपने मकासद के लिए दूसरों को इस्तेमाल करते हैं, सीढ़ी बनाते हैं उनके कंधे पे रख के आप जानते हैं क्या करते हैं। हर इंसान के अंदर खुद एतमादी इतनी होनी चाहिए कि वो किसी और की उसे जरूरत ही ना पड़े। वो बात और है कि बहुत से मामलात ऐसे हैं जहां पर हमें किसी और की जरूरत पड़ती है, लेकिन अपनी जमानत हम खुद ही ले सकते हैं, अपने जमीर से हम बात खुद ही कर सकते हैं, कोई और तो कर नहीं सकता, है ना? अच्छा, हमारे सेगमेंट्स होते हैं शो के। हमारा अगला जो सेगमेंट है वो है रिलीजियस एंड मॉरल हिपोक्रेसी। अब थोड़ा सा सेंसिटिव है तो इसको जरा गौर से सुनिएगा। मजहब, इखलाकियात और हमारे आमाल, ये मौजू एहसास जरूर है, हसास जरूर है, लेकिन इसे नजरअंदाज करना भी मुनासिब ना होगा। दुनिया के तमाम बड़े मजाहिब सच्चाई, इंसाफ, हमदर्दी और इंसानी एहतराम को अहमियत देते हैं, लेकिन एक बुनियादी सवाल है, क्या मजहबी शनाख्त हमेशा इखलाकी किरदार की जमानत होती है? हम इबादत की पाबंदी को अहम समझते हैं, मगर क्या हम अपने मामलात में भी इतने ही मोहतात रहते हैं? हम दूसरों के इखलाकियात पर सवाल उठाते हैं, मगर अपने कारोबार, जुबान और ताल्लुकात में इंसाफ के तकाजे कहां तक पूरे करते हैं? यहां मजहब पर नहीं बल्कि इंसानी रवैये पर सवाल पैदा होता है। एक शख्स मजहबी तालीमात पर यकीन रख सकता है और फिर भी अपनी कमजोरियों की वजह से गलती कर सकता है। उसकी हर गलती को मुनाफ़िकत कहना क्या मुनासिब है? लेकिन जब कोई शख्स अपनी मजहबी या अखलाकी मुकाम को दूसरों पर बर्तरी हासिल करने के लिए इस्तेमाल करे, जबकि खुद अपने असूलों को मुसलसल नजरअंदाज कर रहा हो, तो हमें उस तजाद पर बात करनी चाहिए। एक डिबेटेबल सवाल यह है, ये सवाल पैदा होता है, क्या इच्छा इंसान बनने के लिए मजहबी होना जरूरी है, या इंसान का किरदार उसके अमल से जाना जाता है? Religion as a source of moral guidance and ethical behavior as something that must ultimately be demonstrated through actions. Asal sawal ye nahi ki hum dusron ke samne kitne nek dikhai dete hain,
असल सवाल ये है कि जब कोई हमें देख नहीं रहा तब हमारा किरदार कैसा होता है।

वो बात और है कि जब हमें कोई नहीं देख रहा होता तो हमें हमारा खुदा तो यकीनन देख रहा होता है। तो क्या हम अपने जो फराइज हैं, अपने अकायद हैं, अपने असूल हैं, हम अपने लिए अगर ज़िंदगी को कुछ असूल बना भी लेते हैं तो क्या हम अपने उन असूलों पे अमल भी कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, इस पे मज़ीद बात करेंगे इस ट्रैक के बाद। चन्ना किते गुजारी आई इज़ अ कवर सॉन्ग बाय सनिया खान।

0: तो वो उसके साथ ताल्लुक ख़त्म नहीं करेंगे, ताल्लुक बना के रखेंगे लेकिन उसको इनडायरेक्टली नुकसान भी पहुंचाते रहेंगे। अच्छा, कुछ लोग अब ऐसे होते हैं जो कि मुनाफिक, जब उनको पता चल जाए सामने वाला मुनाफिक है तो उसके साथ वो बिल्कुल अपना ताल्लुक ख़त्म कर देंगे। अच्छा, उनको आजकल क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि यार नहीं, दुनियादारी रखनी पड़ती है और हर एक के साथ सलाम दुआ रखनी चाहिए, कोई पता नहीं कौन सा काम कब काम आ जाए, कौन सा शख्स कब काम आ जाए। तो ये दो
1: मतलबी रिश्ता हो गया ना,
0: मतलबी रिश्ता हो गया कि हमने ख़त्म नहीं करनी किसी के साथ। लेकिन अगर कोई सच्चा है और वो या तो ठीक है, वो आपके वाले साहब ने जो जैसे कहा था, या तो रखें या बिल्कुल ख़त्म कर दें, वो ग्रे एरिया बीच में होना नहीं चाहिए रिलेशंस के अंदर।
1: लेकिन मुझे ये मैसेज यही कहा डॉक्टर साहब कि अगर आप किसी के साथ चलते हैं तो मुखलिसी से चले
0: जी,
1: नेक नीति से चले, क्लीन हार्टेडली
0: जी।
1: अगर नहीं चल सकते तो उनके साथ उनको जवाब दे दे, ताकि जवाब एक मिनट के बंदे का कड़वा जरूर लगता है लेकिन उसमें ये होता है कि जिंदगी में फिर भी आपका अगर दोबारा सामना हो ना तो आप हंसी खुशी एक दूसरे को मिल सके। वो सामने वाला ये जो है ना इस बात को मानेगा, तेरा अगली इन्होंने जो ना इसने मुझे सच कहा था।
0: नहीं, लोग अप्रिशिएट नहीं करते इस चीज को, लोग उमर इस चीज को लोग अप्रिशिएट नहीं करते, लोग इसको गलत समझने लग पड़ते हैं और वो दिल में बात रख लेते हैं।
1: सबसे बड़ी बात यह ना कि आजकल एक और भी चीज है
0: जी,
1: लोग आपके अंदर देखेंगे अगर आपका बॉन्ड किसी के साथ अच्छा है, आपकी अच्छी चल रही है, अच्छी बातचीत है, सारा कुछ है, somehow उनकी कोशिश होगी आपको ब्रेक करने की। ये भी बात सोचने वाली होती है, रिप्स पैदा की जाती है ठीक है, रिप्स ऐसे रिप्स ऐसे नहीं होती, मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसे नहीं होती ये। और कुछ बातें होती है जो ना आपको अगर आराम से सुकून से प्यार से मोहब्बत से करनी चाहिए वहां पर। अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने जिंदगी में, मैं अपनी मिसाल देती हूँ आपको, मैंने बहुत सारे काम बहुत सारी जगहों पे गुस्सा किया और मैंने नुकसान उठाए हैं ठीक है। अभी मुझे रियलाइज होता है, अभी मुझे रियलाइज होता है और मैंने अपने आप को बैठ के, मैं वो क्या कहते हैं, यू एनालाइज योरसेल्फ, एनालाइज करें कि मैं कहाँ पे गलत था, कहाँ पे सही था, कहाँ पे मैंने काम ठीक किया, कहाँ पे मैं गलत किया। इसको किस तरह मैं बेहतर कर सकता था, इसको मैं किस तरह अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता था। When you start doing that to yourself, आप बेहतर होते जाएंगे, आपके रिलेशन भी बेहतर होंगे, आपकी जिंदगी में सुकून भी आएगा, आप में सारी चीजें इंशाल्लाह अल्लाह ताला सब ठीक कर देते हैं बंदे को। लेकिन ये है कि ये जो होता है ना कि दुनियादारी के लिहाज से और ये चीजें नहीं, ये बातें नहीं होती। आपने जहां पर रिश्ता रखना है मुखलिसी के साथ और ऑनेस्टी के साथ और विक्ले माइंड के साथ रखना चाहिए,
0: वरना नहीं रखना चाहिए,
1: वरना नहीं रखना चाहिए।
0: चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया उमर साहब, आपकी बातें लोगों ने सुनी और उम्मीद है कि कुछ लोगों को
1: गाना प्ले करें, मैं गाड़ी चलाता हूँ वो सुनता जाऊंगा।
0: अच्छा,
1: और मैं ये मेरे जितने तमाम लिसनर्स हमारे रेडियो के सबको डेडिकेट करता जाऊँ और सब, और मेरे दोस्त जो है वो इस शो में मेरे दो तीन अभी कॉल पे हम लगे होते तो उनके नाम कर रहे हैं मेरे गाना। अच्छा था ना बॉलीवुड का रोमांटिक सॉन्ग,
0: बॉलीवुड का रोमांटिक सा गाना,
1: रोमांटिक सा गाना, आज रोमांटिक सुनने का मूड।
0: ये आपने जरा ना मुझे मुश्किल में डाल दिया। चले, मेरे पास एक
1: माशाल्लाह बहुत प्यारा शो आप कर रहे हैं और इंशाल्लाह वो ठीक है।
0: चले ठीक है, मैं आपके लिए थोड़ी देर में कोई चूज करता हूँ गाना, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। जी हाँ, ये हैं उमर जिन्होंने हमारे शो में कॉल किया और आज का जो हमारे डिस्कशन है मुनाफ़िकत, उसके ऊपर कुछ चंद बातें की। आप भी करना चाहें, अपने नज़रियात का इज़हार करना चाहें, अपने ख्यालात का इज़हार करना चाहें, अपने तजुर्बात हमारे सामने रखना चाहें, देन यू आर द मोर देन वेलकम। और ऐसा करते हैं कि उमर साहब आपके लिए गाना यकीनन प्ले करेंगे, मैं ये गाना आपके नाम करने लगा था लेकिन जब आपने कहा ना कि बॉलीवुड का रोमांटिक सा गाना होना चाहिए तो आपने मुझे मुश्किल में डाल दिया, क्योंकि मैं रोमांटिक गाने सुनता नहीं हूँ लेकिन सुना ज़रूर सकता हूँ। खैर, ये हमारे उन तमाम लोगों के लिए जिनके दिल दुखे हुए हैं और बहुत परेशान से रहते हैं। अताउल्लाह खान ईसा खेलवी का ओरिजिनल ट्रैक है जिसको शहजाद अली ने बहुत अच्छे से गाया, दिल लगाया था दिल लगी के लिए, बन गया रोग

दिल लगाया था दिल लगी के लिए, बन के यहाँ रोग जिंदगी के लिए। अरे हाय हाय हाय, लोग अपनी जिंदगी में रोग क्यों पाल लेते हैं? जी हाँ, ये रोग है जो कि पाला जाता है, और जब हम रोग पाल लेते हैं तो हमें सोग लग जाता है, और जब हमें सोग लग जाता है तो हम कहीं के नहीं रहते। वेलकम बैक जी, आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM लाइव ब्रॉडकास्ट फ्रॉम नॉटिंघम, नॉट ओनली ऑन FM बल्कि डैब एज वेल। radiofaza.co.uk हमारी वेबसाइट है, इस पे भी जाके अब हमें लाइव सुन सकते हैं। मॉडर्न सोसाइटी अनफिल्टर्ड आपके लिए ये शो लेकर आते हैं एवरी वेनसडे 6 to 8 PM। और आज का जो हमारा उन्वान है, हमारे आज के जो डिस्कशंस हैं वो है मुनाफकत पे, हिपोक्रेसी पे। इस ट्रैक से पहले हमें कॉल की थी उमर ने, और उमर ने अपनी चंद बातें कहीं, अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर किए। अगर आप भी करना चाहें तो आप कॉल कर सकते हैं 01157100971 पे। उमर, आपने जिस गाने की रिक्वेस्ट की है, आपने जिस गाने की नहीं, आपने किसी भी बॉलीवुड रोमांटिक गाने की रिक्वेस्ट की है, वो हम आपके लिए प्ले करेंगे थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले हम कुछ बातें कर लें, क्योंकि हमने काफ़ी तैयारी की होती है और हम ये नहीं चाहते कि कोई सेगमेंट इसमें मिस हो जाए। अच्छा जी, हमारे अशो का आज छठा सेगमेंट है, वो है जी स्टेटस, इमेज एंड सोशल हिपोक्रेसी, यानी कि दिखावे का मुआशरा। आज के मुआशरे में एक अजीब मुकाबला जारी है, कौन ज्यादा कामयाब नजर आता है, किसका घर बड़ा है, किसकी शादी ज्यादा शानदार हुई, किसके ताल्लुकात ज्यादा बासर हैं। हम सादगी की तारीफ तो जरूर करते हैं, मगर तकरीबात में दूसरों को मुतासिर करने के लिए अपने इस्ताद से बढ़कर खर्च करते हैं। हम कहते हैं कि हम बिल्कुल सादगी से शादी करेंगे, इट हैज टू बी वेरी एलिगेंट एंड वेरी सिंपल, लेकिन उसके अपनी जो हैसियत है उसे दिखाने के लिए हम बहुत पैसा खर्च करेंगे। हम दौलत को सब कुछ नहीं समझते, ये कहते हैं, मगर इंसान की इज्जत का अंदाजा अक्सर उसकी माली हैसियत से ही लगाया जाता है। हम कहते हैं कि हम हर काम काबिले एहतराम है, लेकिन बास पेशों के से वाबस्ता अफराद को वो इज्जत नहीं मिलती जिसके वो मुस्तहिक हैं। आपको ना एक प्रोवोकेटिव एग्जांपल देता हूं। एक शादी में दो मेहमान आते हैं, एक महंगी गाड़ी में यानी कि बड़ी लग्जरी गाड़ी में आता है और दूसरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आता है। दोनों एक ही खानदान के दोस्त हैं, लेकिन इस्तकबाल किसका ज्यादा किया जाएगा ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये होता है रवैया, यानी कि इंसान की पहचान जो है उसके लिबास से की जाती है, उसने गाड़ी कैसी रखी हुई है, उसका घर कैसा है, उसका मोबाइल कौन सा है, या फिर उसका रख रखाव कैसा है, एक इम्प्रेशन जो है सोसाइटी में उसका बन जाता है। बहुत से लोग हैं जिनका इम्प्रेशन आप सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं और आपको लगता है कि यार वाह क्या शख्स है, इसे ज़रूर मिलना चाहिए, लेकिन जब आप उनसे मिलते हैं तो आपको मायूसी भी होती है। अच्छा चलें, आपसे एक सवाल करता हूँ, ये बताएं कि आपकी नज़र में माशरे का सबसे बड़ा दोहरा मयार क्या है, दौलत और समाजी हैसियत, खानदानी रिश्ते और मनफी तवक्कुआत, मजहबी और इखलाकी दावे, सियासत और ताकत, और बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन पे हम डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको लिए चलते हैं एक ट्रैक की जानब, जिसकी फरमाइश उमर साहब ने हमसे की है। उमर, आपके लिए ये ट्रैक प्ले कर रहा हूँ और उम्मीद है कि आपको ये ट्रैक पसंद आएगा। आतिफ असलम की आवाज में है, आपके तमाम दोस्तों के लिए पहली दफा। इंसान को नया नया प्यार होता है ना, तो कुछ इसी तरह की फीलिंग्स होती हैं।

फिर तुम हंसोगे। ये इश्क नहीं आसान है गालिब, आग का दरिया है और कूद के जाना है।

ये अगर कोई जॉन एलिया के फैंस हैं तो उनके लिए है। बल्कि मैं सोच रहा हूँ कि एक शो करना चाहता हूँ, मेरा बड़ा जी चाहता है कभी कभी, जैसे ना एक लेट नाइट शो किया जाए जिसमें शायरी हो, इस तरह की गजलें हों और सिर्फ प्यार भरी बातें हों, दुख और गम को भुलाकर एक अलग दुनिया में चले जाएं, मैं और आप, हम तुम। लेकिन क्या करें कि हमें पाबंद रहना है अभी अपने शो के उन्वान की जानिब जाना पड़ेगा, वो है मुनाफ़कत। मुनाफ़कत का इलाज क्या है? सामईन, आज हमने 2 घंटे एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू की जो बज़ाहिर दूसरों से मुतालिक नज़र आता है, लेकिन हकीकत में हम सब के अंदर कहीं ना कहीं मौजूद तज़ादात की तरफ इशारा करता है। मुनाफ़कत का मुकाबला करने के लिए शायद हमें सबसे पहले ये तस्लीम करना होगा कि इंसान मुकम्मल नहीं होता, हम गलतियां करते हैं, हम कभी अपने असूलों पर कायम रहते हैं और कभी कमजोर पड़ जाते हैं। लेकिन कमजोरी और मुनाफ़कत में एक अहम फर्क है। कमजोर इंसान कभी अपनी गलती को पहचान कर बेहतर बनने की कोशिश कर सकता है, और मुनाफिकाना रवैया उस वक्त ज्यादा खतरनाक हो जाता है जब हम अपनी गलती के लिए दलील और दूसरों की गलती के लिए सजा तलाश करते हैं। हम दूसरों से सच्चाई चाहते हैं, तो क्या हम खुद सच बोलने को तैयार हैं? हम दूसरों से इंसाफ चाहते हैं, तो क्या हम अपने मुखालिफ के साथ भी इंसाफ कर सकते हैं? हम दूसरों से इज्जत चाहते हैं, तो क्या हम उन लोगों की भी इज्जत करते हैं जिनसे हमें कोई फायदा नहीं पहुंच सकता? मुआशरे की इस्लाह सिर्फ दोनों को बदलने से नहीं, मुआशरे की इस्लाह सिर्फ दूसरों को बदलने से नहीं, अपने मयार को अपने ऊपर भी लागू करने से शुरू होती है। और शायद यही आज की गुफ्तगू का सबसे अहम नतीजा है। हम आईने से इसलिए नहीं डरते कि वो झूठ बोलता है, हम कभी कभी इसलिए डरते हैं कि वो सच दिखाता है। मैं आपको आज एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। अगर आपके अल्फाज, आपके फैसले और आपके अमाल एक दूसरे के सामने खड़े हो जाएं, तो क्या वो एक दूसरे को पहचान पाएंगे? नेक दुआओं और तमन्नाओं के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा, और इसी उम्मीद के साथ कि आपसे अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी बुध की शाम

नहीं तो क्या आप अबसुर्दा हैं? आप कहें नहीं तो सब ठीक है। हर एक के आगे अपने दुखड़े ना रोए, क्योंकि किसी ने उसका मुदावा नहीं करना। आपकी पीठ पीछे वही लोग आप पे हंसेंगे। इजाजत चाहता हूं दिल की अता गहराइयों से। आप सबका शुक्रगुजार। जकी खान, अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक नए उनवान के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, मोहब्बतें बांटिए। यकीन माने कि बांटने से बढ़ती है, कम नहीं होती। और नफरतों को दूर कीजिए, बहुत खतरनाक चीज है। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज।

0: It's commercial time.
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: From 12:30 PM to 11 PM every Wednesday to Monday.
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.

0: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
1: Radio Bazaar 97.1 FM.
2: Hit music. Back to back.
3: मंगला जो भी मंगना मिल जूगा
4: जो मंगना सी वो तो मिल गया

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी कम कर दे रहे, सोने ते स्वागा ये, क्यों हर तरह दा वीजा एक्सटेंशन, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

0: या फिर इंग्लिश और अरबिक। तो सुनते रहिए
1: फैजान 97.1 FM।
0: हो गया ना कमाल।
2: This is a public service announcement.
3: The station
4: that plays
5: foot tapping music.
6: Hazar 97.1 FM.
7: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजान 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजान 97.1 FM एंड डेप।

0: हाँ हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: आप सुन रहे हैं वो स्टेशन जो सिर्फ गाने नहीं यादें सुनाता है।
1: देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए दूर तक।
0: फजान 97.1 FM हर पल आपके साथ साथ।
2: Yo, yo, yo, yo, got an Angela.

0: वॉल्यूम बढ़ाइए क्योंकि अगला गाना है और भी जबरदस्त। ये है असली म्यूजिक का मजा सिर्फ और सिर्फ फजा 97.1 FM पर।
1: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
2: Radio Fazan 97.1 FM.

0: Turn it up. Radio Faza 97.1 FM.
1: It's commercial time.
2: इंग्लैंड में हम पानी का इस्तेमाल उतनी तेजी से कर रहे हैं जितनी तेजी से प्रकृति इसे दोबारा भर नहीं सकती। अगर कुछ नहीं बदला तो 2055 तक हमें हर दिन 5 बिलियन लीटर से भी अधिक पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है और वेल्स में अधिक गीली सर्दियां और अधिक सूखी गर्मियां पानी की सप्लाई पर दबाव डाल रही हैं। हम में से अधिकतर लोग सोचते हैं कि हम दिन में 30 लीटर पानी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हकीकत में ये 140 लीटर के करीब है। हम सब कुछ साधारण बदलाव करके पानी बचाने में मदद कर सकते हैं। शावर लेने में कम समय लगाएं, लीक करते नलों या टॉयलेट को ठीक करें, चलते हुए नल की बजाय बर्तन धोने के लिए वॉशिंग अप बाउल का इस्तेमाल करें और अपने डिशवॉशर या वॉशिंग मशीन पर एको मोड चुनिए। पानी अनमोल है, इसकी इज्जत के लिए हम सबको कम पानी का इस्तेमाल करना होगा। हर दिन पानी बचाने के आसान तरीकों के लिए लेट्स सेव वाटर सर्च करें या letssavewater.com पर जाएं।
3: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
4: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
5: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
4: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
5: मुगल बिल्डर्स?
4: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
6: जी मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
4: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
6: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
4: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
7: Bigger, bigger and better, better. The radio station for people who love music. 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंकिन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315066। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ हरियाणा सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
7: This is a public service announcement.
8: Everybody. The station.
9: That plays
10: foot tapping music.
11: Hazar 97.1 FM.
12: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहाँ। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप।
13: यू आर लिसनिंग टू रेडियो फजा ऑन 97.1 FM।

आपके दिल की धड़कन रेडियो फजा 97.1 FM।

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोखी हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमराह चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services, looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham. Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention,
3: property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
4: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
5: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
4: सलासा ट्यूशन सेंटर?
5: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्टफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
4: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
5: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
4: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
6: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
7: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
8: You are listening to Radio Fazza on 97.1 FM.
9: You are listening 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: Rosyd Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosyd Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosyd Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosyd-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosyd Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 AM till 10:30 PM.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स, होर कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे, सोने ते सुहागा ए, क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.